कि ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। और पिछले कुछ सालों में जितने चुनाव हुए हैं, दिल्ली का, महाराष्ट्र का, बिहार का, वेस्ट बंगाल का, हरियाणा का, मध्य प्रदेश का, ये सारे चुनाव कैंसिल करके दोबारा कराए जाएं।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: यार लोन भूल गया मैरी
2: इट्स
1: जस्ट अ गुड बैंक ना
3: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल फाइनेंस बैंक
3: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
4: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
5: अस उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

0: अगर तीन अफसरों के बीच में पत्राचार होता है, तीन अफसर पत्राचार में अपने अपने मन की बात क्यों अपने अपने विषयों को साझा करते हैं और अंततोगत्वा कंसेंसस के साथ रिजल्ट पर पहुंचते हैं, तो ये डेमोक्रेसी है? या एक ही भाषा में पत्र लिखना और उसके बाद एक ही नतीजे पर पहुंचना, ये डेमोक्रेसी है? मुझे लगता है वी कैन हैव नो बेटर टाइम फॉर डेमोक्रेसी देन द प्रेजेंट टाइम इन विच दो यूनानिमिटी इज देयर इन SIR बट स्टिल वी हैड डिस्कशंस एंड डिबेट इन वन ऑफ द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऑफ इंडिया, दैट इज द इलेक्शन कमीशन. और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा एज फार एज SIR इज कंसर्न, बिकॉज ये सारी चीजों के मध्य में SIR है, द सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड वन मेजर फाइनल जजमेंट डायरेक्टली अपहोल्डिंग द लीगैलिटी ऑफ SIR ऑन 27 मई 2026 में इन सभी विषयों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपना जजमेंट बड़े स्पष्ट रूप से SIR को अपहोल्ड करते हुए दिया है. अगर विश्वास सुप्रीम कोर्ट पर भी नहीं है, विश्वास इलेक्शन कमीशन पर भी नहीं है, विश्वास ईवीएम मशीन पर भी नहीं है, अंततोगत्वा जनता पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा. जनता ही वोट देती है, जनता ही हराती या जिताती है. इसलिए आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हम जनता की दरबार में छोड़ते हैं. बहुत बहुत
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

वी आर इन ए डेमोक्रेसी, हम कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है, डेमोक्रेसी में हम काम करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कमीशन, उसको तो बहुत डेमोक्रेटिक होना ही चाहिए। और वहां पे मेजोरिटी डिसीजन एक्ट में लिखा है, अगर मेजोरिटी से डिसीजन जो नहीं लिए गए हैं वो डिसीजन इलीगल हैं, फुल स्टॉप। ये क्या बचपन है सोर्सेज, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, फॉरेन प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो शौक भी है आपको, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो जिसमें तीनों मेंबर होने चाहिए और वो बताएं कि जो आज की रिपोर्ट है वो बिल्कुल गलत और बकवास है और एक्चुअली सारे डिसीजन यूनैनिमसली लिए गए हैं। तो कोई हैरानी, बहुत अच्छा काम किया, वेल डन, ताली बजाते हैं उनके लिए हम।

0: कि ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। और पिछले कुछ सालों में जितने चुनाव हुए हैं, दिल्ली का, महाराष्ट्र का, बिहार का, वेस्ट बंगाल का, हरियाणा का, मध्य प्रदेश का, ये सारे चुनाव कैंसिल करके दोबारा कराए जाएं।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

तो आज ये तय हो गया है कि मेजॉरिटी ज्ञानेश कुमार के साथ नहीं थी। ज्ञानेश कुमार अपनी मनमर्जी से फैसले करते थे किस तरह इलेक्शन चलाना है, क्या ईआरओ को करना है, कौन सा फॉर्म फाइल करना है, ये तय करते थे ज्ञानेश कुमार। जोशी साहब और संधु साहब जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, कई बार उन्होंने विरोध किया कि जो आप कर रहे हो गणेश कुमार जी, और लगभग मेरे ख्याल 40 बार 14 बार 10 महीने में विरोध किया कि आप ये क्या कर रहे हो, जो कर रहे हो आप वो संवैधानिक नहीं है, वो कानून के मुताबिक नहीं है। और इसके पीछे सोच क्या थी, दो बातें आपको मोटी मोटी बता देता हूं कि जो सॉफ्टवेयर है इलेक्शन कमीशन का, जो अधिकारी है जिसको अख्तियार है वो है ईआरओ, उसको एक्सेस कर सकता है क्योंकि ईआरओ वहां बैठा हुआ है कंस्टिट्यूएंसी में जहां भी पोल हो रहा है, ईआरओ तय कर सकता है और उसको एक्सेस मिलना चाहिए इस सॉफ्टवेयर का कि किसको डिलीट करना है और किसको ऐड करना है। अब हुआ क्या कि ये सारा सिस्टम सेंट्रलाइज हो गया, मतलब कि ये इलेक्शन कमीशन के हाथ में आ गया, ईआरओ को एक्सेस दिया ही नहीं गया। और इसमें दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स ने विरोध किया, संधू साहब ने और जोशी साहब ने, कि आप क्या कर रहे हो। और एक उदाहरण गोवा का सामने आ गया कि 27 ऐसे लोग थे जो ईआरओ ने कहा कि साहब इनको अपलोड कीजिए, तो सही वोटर हैं, अपलोड नहीं होने दिया। तो पहली बात तो ये कि इलेक्शन कमीशन ने सारा सिस्टम सेंट्रलाइज कर लिया, कानून के खिलाफ था, इलेक्शन कमीशन के प्रोसीजर के खिलाफ था। और इसका मतलब ये हुआ कि जो आईटी सेल है जिसमें कोई भी अधिकारी बैठा हुआ है गणेश कुमार के अधीन, वो तय करेगा कि कौन डिलीट होगा और कौन ऐड होगा।

यह एक बेहद गंभीर समाचार है कि पिछले 10 महीने में 2 चुनाव आयुक्तों ने निर्वाचन आयोग के गलत निर्णयों पर 14 बार अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। इससे गंभीर और क्या विषय हो सकता है कि जो भी फैसले हुए हैं उन पर आपत्ति दर्ज कराई है। इसका सीधा मतलब यह है कि सभी चुनाव आयुक्त अपना सही काम नहीं कर पा रहे हैं। एक स्वतंत्र निकाय के सदस्यों को अगर न्यायपूर्ण कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है या उनकी कोई सुनवाई नहीं है तो ये लोकतंत्र के लिए बेहद घातक और खतरनाक हालत है। कुछ लोगों द्वारा सत्ता की कठपुतली बनकर लोकतंत्र को धोखा देना घोर संवैधानिक अपराध है। ये लोकतंत्र को मिटाने के किसी षड्यंत्र से कम नहीं है। सीधा सीधा षड्यंत्र है लोकतंत्र को खत्म करने का।

0: गाड़ी रोको, गाड़ी रोको।
1: नहीं मैं नहीं, लोग लोग बोल रहे थे।
0: अच्छा, लेकिन वो गाड़ी ड्राइवर नहीं रोक रहा था।
1: अब जब गाड़ी ड्राइवर ने रोकी नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद रोकी, अभी नुकसान हो चुका था।
0: तो वो क्या बीड़ी सिगरेट भी पी रहे थे?
1: अब स्मेल तो आ रही थी सर, अब पता नहीं स्मेल बीड़ी सिगरेट की थी कि काय चीज की थी।
0: अच्छा, नहीं बता रहे हैं कि वो ड्राइवर हंस भी रहा था जब लोग बोल रहे थे कि रोको रोको।
1: हंसने की आवाज तो सर, गाड़ी इतनी तेज चल रही थी कि गाड़ी हंसने की आवाज आ रही थी।
0: तो उसके बाद फिर जब बस में आग लगी तो आप लोग बाहर निकले, फिर कोई पुलिस कैसे आई थी? मतलब कोई पुलिस आई कि 9 लोग जो फंसी गए थे बस में निकल नहीं पाए?
1: वो निकल ही नहीं पाए, इतनी तेज हो गई आग, वो निकल ही नहीं पाए।
0: अच्छा, और आप लोग वही दरवाजे की तरफ से निकले?
1: हाँ, सब लोग दरवाजे की तरफ से निकले। जब जब दो तीन लोगों ने चिल्लाया कि निकलो जल्दी, निकलो आग, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, इतनी देर में आग लग गई, टाइम ही नहीं मिला निकलने का, बाहर उतना मौका नहीं फिर मिल पाया लोगों को। अगर गाड़ी टाइम से रुक जाती तो सब लोग निकल जाते।
0: अच्छा, तो जब मतलब बस में आग लगी तो उस वक्त कुछ लोग सो भी रहे थे?
1: हाँ सर, आधे से ज्यादा लोग सो रहे थे, आधे से ज्यादा क्या 80% लोग सो रहे थे।
2: आज रात्रि को थाना जेवर क्षेत्र अंतर्गत यमुना एक्सप्रेस वे पर एक बस रजिस्ट्रेशन नंबर BR 32PA 8647 कश्मीरी गेट नई दिल्ली से महोबा की ओर जा रही थी, तभी 33 किलोमीटर माइलस्टोन पर उक्त बस में अचानक से आग लगी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस के उच्च अधिकारीगण, स्थानीय पुलिस बल, रेस्क्यू टेंडर व 4 फायर सर्विस यूनिट द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर आग को पूर्णतः बुझा दिया गया तथा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। कुल 20 से 25 लोगों को उसमें रेस्क्यू किया गया। पुलिस टीम व फायर सर्विस यूनिट द्वारा अथक प्रयास करते हुए बस के अंदर जाने पर यह ज्ञात हुआ कि उक्त घटना में 9 व्यक्ति बस के अंदर जलने, दम घुटने के कारण दुखद मृत्यु अवस्था में मिले। थाना जेवर पुलिस द्वारा मृतकों के शिनाख्त का प्रयास किए जा रहे हैं। संदर्भित घटना के संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए चालक व परिचालक को हिरासत में लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। यह आग जो है बस के इंजन से स्टार्ट हुई थी, वह फ्यूल होने की वजह से अचानक से आग जो है भयानक हो गई। आज रात्रि को थाना जेवर क्षेत्र अंतर्गत यमुना एक्सप्रेस वे पर एक बस रजिस्ट्रेशन नंबर BR 32PA 8647 कश्मीरी गेट नई दिल्ली से महोबा की।
3: On that note, we have Arvind Oja joining us on the broadcast with more details. Arvind, हमने आपकी जो बातचीत हुई, जो एक सर्वाइवर है पैसेंजर्स में से, जो उन्होंने पूरा किस्सा उन्होंने बताया कि उनके साइड का कि हुआ क्या एग्जैक्टली उस बस में एक के बाद एक, एक चीज जो उन्होंने बताई और ये काफी ज्यादा शॉकिंग एंड अपॉलिंग एक चीज है कि जब बस ड्राइवर को ये चीज बताया गया कि पहली बात तो बस के अंदर से एक जलने की बदबू आ रही है, उसके बावजूद उन्होंने बस रोका तो नहीं पर वो हंस रहे थे। अब पैसेंजर्स का क्या कोई ऐसा बयान आया है कि ये जो ड्राइवर थे ये हो सकता है नशे में थे या ऐसा कुछ डिटेल भी आ रहा है सामने?
4: देखिए बिल्कुल, और इंडिया टुडे ने FIR भी एक्सेस किया है और यही सुनील कुमार जिनकी कंप्लेंट पर FIR दर्ज हुई है और जिनका फोन इंटरव्यू इंडिया टुडे ने किया है, इन्होंने बताया कि जब आग लगी तो बस और कंडक्टर भाग गए थे, सिर्फ वहां पर पैसेंजर थे नंबर एक। नंबर दो, बस और कंडक्टर बीड़ी और सिगरेट पी रहे थे, ये सुनील कुमार ने इंडिया टुडे को भी बताया है और FIR में भी यही लिखा हुआ है। तो बड़ी लापरवाही इसमें सामने आ रही है। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है कि जब बदबू आ रही थी, स्मेल आ रहा था बस से, तब जो पैसेंजर थे उन्होंने ड्राइवर को रोकने के लिए कहा, लेकिन जोर जोर से ड्राइवर हंस रहा था। लेकिन जब आग फैल गई उसके बाद फिर जो बस है उसको साइड रोका गया, लेकिन तब तक जो आग है वो पूरी बस में फैल चुकी थी। अब किसी तरह से लोग नीचे उतरे। उसके अलावा जो फायर का जो मशीन होता आग बुझाने का सिलेंडर, वो भी काम नहीं कर रहा था, आग इतना फैल गया था। फिर सिलेंडर से शीशा तोड़ा गया, उसके बाद किसी तरह

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: यार लोन भूल गया मैरी
2: इट्स
1: जस्ट अ गुड बैंक ना
3: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल फाइनेंस बैंक
3: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
4: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
1: अस उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

यह एक बेहद गंभीर समाचार है कि पिछले 10 महीने में 2 चुनाव आयुक्तों ने निर्वाचन आयोग के गलत निर्णयों पर 14

0: If two of the election commissioners were objecting to these decisions, then obviously it goes to show that the decisions which have been taken, as a consequence of which changes were carried out illegally to Form 6 by way of example, which could have only been done by an amendment to the rules, which has to be laid on the floor of Parliament, then these proceedings are per se arbitrary, capricious, and therefore illegal.
1: ये स्टोरी परत दर परत खोल के रख देती है कि एक संवैधानिक संस्था जिसका काम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है, वो कैसे डिस्क्रिशन को मन मर्जी से कंफ्यूज करती है। मैं समझता हूं 10 महीनों में 14 बार लिखित असहमति व्यक्त की गई, क्लैरिफिकेशन सीख किया गया, आगाह करने की कोशिश की गई, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश जी ने सब चीजों को दरकिनार कर दिया। ही शुड इमीडिएटली रिजाइन, कोई अदर ऑप्शन ही नहीं है।

अगर तीन अफसरों के बीच में पत्राचार होता है, तीन अफसर पत्राचार में अपने अपने मन की बात के वो अपने अपने विषयों को साझा करते हैं और अंततोगत्वा कंसेंसस के साथ रिजल्ट पर पहुंचते हैं, तो ये डेमोक्रेसी है? या एक ही भाषा में पत्र लिखना और उसके बाद एक ही नतीजे पर पहुंचना, ये डेमोक्रेसी है? मुझे लगता है वी कैन हैव नो बेटर टाइम फॉर डेमोक्रेसी देन द प्रेजेंट टाइम इन विच दो यूनानिमिटी इज देयर इन SIR, बट स्टिल वी हैड डिस्कशंस एंड डिबेट इवन ऑफ द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऑफ इंडिया, दैट इज द इलेक्शन कमीशन. और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा एज फार एज SIR इज कंसर्न, बिकॉज ये सारी चीजों के मध्य में SIR है, द सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड वन मेजर फाइनल जजमेंट डायरेक्टली अपहोल्डिंग द लीगैलिटी ऑफ SIR ऑन 27 मई 2026 में इन सभी विषयों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपना जजमेंट बड़े स्पष्ट रूप से SIR को अपहोल्ड करते हुए दिया है. अगर विश्वास सुप्रीम कोर्ट पर भी नहीं है, विश्वास इलेक्शन कमीशन पर भी नहीं है, विश्वास ईवीएम मशीन पर भी नहीं है, अंततोगत्वा जनता पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा. जनता ही वोट देती है, जनता ही हराती या जिताती है. इसलिए आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हम जनता की दरबार में छोड़ते हैं. बहुत बहुत

0: Well, as you know, my brother Rahul Gandhi ji has been continuously taking up the issue of the biases and the injustice that is going on through the election commissions. He has repeatedly highlighted multiple issues. And now you are seeing that it is coming out in the news media as well, that election commissioners themselves have highlighted some of the issues to Ganesh Kumar ji. So I think this is an extremely serious issue for our democracy. Because if there are no elections, then where is democracy? And if the elections are unfair and they are being rigged in any manner, and the election commission is assisting in that, and if the election commissioner himself is not only aware of it, but he is allowing it to happen, then it is a very, very serious assault on democracy. It is actually, it is treachery with the nation.
1: We are in a democracy. हम कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है, डेमोक्रेसी में हम काम करते हैं. तो सबसे इम्पोर्टेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कमीशन, उसको तो बहुत डेमोक्रेटिक होना ही चाहिए. और वहां पे मेजोरिटी डिसीजन एक्ट में लिखा है, अगर मेजोरिटी से डिसीजन जो नहीं लिए गए हैं वो डिसीजन इलीगल हैं, फुल स्टॉप. ये क्या बचपन है सोर्सेज. आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, फॉरन प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो शौक भी है आपको, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो जिसमें तीनों मेंबर होने चाहिए और वो बताएं कि जो आज की रिपोर्ट है वो बिल्कुल गलत और बकवास है और एक्चुअली सारे डिसीजन यूनैनिमसली लिए गए हैं. तो कोई हैरानी नहीं, बहुत अच्छा काम किया, वेल डन, ताली बजाते हैं उनके लिए हम.
2: पैनल वन वोट इनफाइनाइट यूजर्स.
3: म्यूचुअल फंड्स सही है.
4: गिरनार एक चाय हो जाए.

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: थ्री चीफ मिनिस्टर्स, थ्री पावरफुल वॉइसेस फ्रॉम द साउथ, सी जोसेफ विजय, डी केशव कुमार।
4: So in politics, there'll be a lot of adjustment, new opportunities, issues. We'll have to digest all those things.
3: V.D. Satishan.
5: You're the people's choice.
6: I'm the party's choice. Party selected me.
3: When they chose to speak first, they chose India Today, the channel where leaders speak.

0: CBU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: कि ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। और पिछले कुछ सालों में जितने चुनाव हुए हैं, दिल्ली का, महाराष्ट्र का, बिहार का, वेस्ट बंगाल का, हरियाणा का, मध्य प्रदेश का, ये सारे चुनाव कैंसिल करके दोबारा कराए जाएं।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: CBU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: ये एक बेहद गंभीर समाचार है कि पिछले 10 महीने में 2 चुनाव आयुक्तों ने निर्वाचन आयोग के गलत निर्णयों पर 14 बार अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। इससे गंभीर और क्या विषय हो सकता है कि जो भी फैसले हुए हैं उन पर आपत्ति दर्ज कराई है। इसका सीधा मतलब यह है कि सभी चुनाव आयुक्त अपना सही काम नहीं कर पा रहे हैं। एक स्वतंत्र निकाय के सदस्यों को अगर न्यायपूर्ण कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है या उनकी कोई सुनवाई नहीं है तो ये लोकतंत्र के लिए बेहद घातक और खतरनाक हालत है। कुछ लोगों द्वारा सत्ता की कठपुतली बनकर लोकतंत्र को धोखा देना घोर संवैधानिक अपराध है। ये लोकतंत्र को मिटाने के किसी षड्यंत्र से कम नहीं है, सीधा सीधा षड्यंत्र है लोकतंत्र को खत्म करने का।

0: and were acquainted with Sanjay and Pramod in Hasanpur itself. Now, action was taken following the complaint and all four accused have now been arrested. The police are investigating the matter based on the victim's statement and other evidence, and legal proceedings are now underway. Let's take a look at the reactions. In fact, the account that's been given by the survivor herself. Listen in to what's been said.
1: जानकारी करने पर यह ज्ञात हुआ कि यह महिला अपने पूर्व के प्रचलित मोहित और लाला राम के नाम के दो व्यक्ति जो सीआरपीएफ में क्रमशः हेड कांस्टेबल और इंस्पेक्टर हैं, इनके साथ में यहां अमरोहा आई थी। ये मोहित और लाला राम अपने मित्र संजय से मिलने यहाँ पर आए थे और इसके बाद में इनको खाना देने के लिए प्रमोद वहाँ गेस्ट हाउस में गए थे। इसके बाद में महिला के कथनानुसार उसके साथ में जो है शारीरिक संबंध बनाए गए। तत्काल प्रभाव से इस मामले को संज्ञान में लेते हुए महिला की लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। सभी जो नामजद अभियुक्त हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है जिनसे पूछताछ प्रचलित है। इसके बाद में जिसकी जो भी भूमिका इसमें निकल कर आती है उसके आधार पर उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, माननीय न्यायालय के समक्ष उसको प्रस्तुत किया जाएगा।
0: आशीष श्रीवास्तव जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट विद मोर डिटेल्स। आशीष, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सबसे पहले काफी शॉकिंग घटना जो सामने आ रही है और ये जो सर्वाइवर का खुद का बयान है कि उनके साथ क्या हुआ, दो सीआरपीएफ पर्सनल इसमें इन्वॉल्व है, एक सीआरपीएफ पर्सनल, एक हेड कांस्टेबल, इसके बारे में और क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे हादसे के बारे में कि कैसे इनको मुजफ्फरनगर से अमरोहा तक लेकर आए ये लोग और उसके बाद उनके साथ क्या क्या हुआ?
2: देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये पहले से परिचित थी महिला और कहीं ना कहीं जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो लेकर फार्म हाउस पर पहुंचे थे जो कि अमरोहा का है। अब ऐसे में चूंकि महिला हरियाणा की रहने वाली थी पीड़िता, और इस दौरान जब पूरी बात वहां पर पहुंचती है उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म का ये मामला एक तरीके से सामने आता है। अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर सीआरपीएफ जवान जो हैं उनको उनके खिलाफ रिपोर्ट बनाई गई है और उनको भेजी गई है। साथ ही साथ इसमें जो दरोगा और वहाँ का जो थाना इंचार्ज था उसको भी कार्रवाई की गई है, उस पर भी कार्रवाई की गई है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा मामला है उसमें कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो भी देखी जा रही है। साथ ही साथ जो फार्म हाउस है जहाँ पर ले जाया गया था वो भी बताया गया है किसी विधायक का है फार्म हाउस, तो उस पर भी कार्रवाई की बात आगे चल रही है। चूंकि इस पूरे मामले पर लिखित में पीड़िता ने जो जो लिख कर दिया है पुलिस उसी के अनुसार बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव भी इस पर पूरी तरीके से हावी, उन्होंने इस बात को कहा है कि जब पुलिस पर ही लग जाए आरोप इस तरीके के तो कैसे शासन और प्रशासन से लोग मदद मांगेंगे। तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी है वो भी इस पूरी तरीके से इस पूरे मामले पर सरकार के अगेंस्ट खड़े होकर इस पीड़िता के साथ खड़ी नजर आ रही है और कहीं इस पर निशाना साधा है सीधे सरकार पर कि किस तरीके से ये जो इंसिडेंट हुआ है उसमें जिम्मेदारी जो है वो सुरक्षा के लोग हैं उनकी ही है। अब ऐसे में इस पूरे मामले पर चाहे लाला राम की बात हो या उसके सहयोगी की, उनको इसमें पूरी संलिप्तता पाई गई और शुरुआती जाँच में पुलिस ने इन पर कार्रवाई की भी है। साथ ही साथ जो कार्रवाइयां की हैं जिसमें गिरफ्तारी की, चार लोगों की गिरफ्तारी है साथ ही साथ, और दो दरोगा और तिपाही के साथ में जो थाना इंचार्ज है उनको पर भी कार्रवाई की गई है। तो ये पूरी तरीके से, हालांकि जो महिला कार्य करती थी वहां पर ले जाई गई है और साथ ही साथ जिनके पास जो जानकारी थी कि वो पहले से परिचित थी इस तरीके की भी जानकारी आई है, लेकिन इस पूरे मामले पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके आगे की कार्रवाई भी लगातार जारी है।
0: जी आशीष, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। व्यूअर्स, इट्स अ शेम ऑफ एन इंसिडेंट व्हेन प्रोटेक्टर्स बिकम परपेट्रेटर्स एंड दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। दिस इज द एंटायर अकाउंट दैट्स बीन इनफैक्ट गिवन बाय द सर्वाइवर हरसेल्फ एंड दीज आर द डिटेल्स वी हैव सो फार फॉर यू इन द इन्वेस्टिगेशन दैट्स बीन लॉन्च्ड। फोर ऑफ देम हैव बीन द अक्यूज्ड हैव बीन अरेस्टेड इज व्हाट वी आर लर्निंग।

0: Dr. Yogesh smoked bidis and cigarettes inside the moving bus and kept ignoring the smoke alert that was raised by the passengers. And not just that, when passengers raised this alarm, they in fact didn't not acknowledge it, but also laughed at them and scoffed them and stopped the bus only when it finally caught on fire. He and the conductor didn't even help the passengers, but ran away from the spot as soon as the fire broke. The two have now been arrested by the police. Apart from the smoking, however, on the bus and not helping the passengers, there's more to it. There are many other lapses that have come to highlight. The bus had only one door, which made it hard for passengers to escape the fire. Prime Minister Modi himself has now taken cognizance of the entire incident and has announced 2 lakh rupee ex gratia for the kin of the deceased and 50,000 for those injured.
1: So, Sunil ji, then जब बस में आग लगी तो क्या हुआ, कैसे बस में आग लगी थी?
2: आधे लोग नींद में थे, आधे लोग जाग रहे थे.
1: हम्म.
2: ड्राइवर अपनी गुटखा पान बीड़ी सिगरेट कर रहे थे.
1: हम्म.
2: आप उसको दो चार बार लोगों ने कहा भैया गाड़ी रोको, ऐसी आ रही है गाड़ी.
1: हम्म.
2: लेकिन गाड़ी रोकी नहीं, बस जब तक काम काफी बढ़ गया उसमें जब ज्यादा धुआं निकलने लगा जब उसने गाड़ी रोकी.
1: अच्छा, तो आप लोग बोल रहे थे जब बदबू आ रही थी कि गाड़ी रोको गाड़ी रोको?
2: नहीं, मैं नहीं, लोग बोल रहे थे.
1: अच्छा, लेकिन वो गाड़ी ड्राइवर नहीं रोक रहा था?
2: अब जब गाड़ी ड्राइवर ने रोकी नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद रोकी, काफी नुकसान हो चुका था.
1: तो वो क्या बीड़ी सिगरेट भी पी रहे थे?
2: अब स्मेल तो आ रही थी, जरा पता नहीं स्मेल बीड़ी सिगरेट की थी कि काय चीज की थी.
1: अच्छा, नहीं बता रहे हैं कि वो ड्राइवर हंस भी रहा था जब लोग बोल रहे थे कि रोको रोको.
2: हंसने की आवाज तो सर गाड़ी थी, तेज चल रही थी, गाड़ी हंसने की आवाज आ रही थी.
1: तो उसके बाद फिर जब बस में आग लगी तो आप लोग बाहर निकले, फिर कोई पुलिस कैसे आई थी? मतलब कोई पुलिस आई कि 9 लोग जो फंसी गए थे बस में निकल नहीं पाए?
2: वो निकल ही नहीं पाए, इतनी तेज हो गई आग, वो निकल ही नहीं पाए.
1: अच्छा, और आप लोग वही दरवाजे की तरफ से निकले?
2: हाँ, सब लोग दरवाजे की तरफ से निकले. जब उन्होंने जब 2-3 लोगों ने चिल्लाया कि निकलो जल्दी निकलो, आग जल्दी जल्दी करो जल्दी करो, बाहर निकलो बाहर निकलो, इतनी देर में आग लग गई, टाइम ही नहीं मिला निकलने का बाहर, इतना मौका नहीं फिर मिल पाया लोगों को. अगर गाड़ी टाइम से रुक जाती तो सब लोग निकल जाते.
1: अच्छा, तो जब मतलब बस में आग लगी तो उस वक्त कुछ लोग सो भी रहे थे?
2: हाँ, आधे से ज्यादा लोग सो रहे थे, आधे से ज्यादा क्या 80% लोग सो रहे थे.
3: आग में भाग रहे थे, आग जल रही थी, भाग रहे थे.
4: बस चल रही थी या रुक गई?
3: रुक गई थी बस, ड्राइवर भाग गया था छोड़ के.
4: उसके बाद काफी सब लोग जो है
3: सारे बेचारे कूद कूद के जा रहे थे, तुमने मूर्ति पड़ी रहे अपने आप, पता नहीं किस तरह जमीन पे सड़क चुकी थी.
5: जब उठे तब क्या देखा आपने, तब आप कहाँ पे थे?
3: बस सड़क पे पड़ी थी, फिर उठ के भाग गई.
5: किसके साथ आप कहाँ जा रहे थे?
3: अपने पति के साथ.
5: कहाँ पे जा रहे थे?
4: बस में. ये बताइए, पहले आप लोगों ने ड्राइवर को बताया कि बस रोक दो या फिर जैसे आग लगने की या फिर ऐसी कोई जलने की बदबू आ रही है?
3: ना, वो तो ड्राइवर के पास से ही आग लगी है.
4: ड्राइवर के पास से आग लगी है,
5: वो बस छोड़ के भाग गया.
3: आगे से आग लगी है.
6: धुआं वगैरह आ रहा था बस में कुछ, कहीं से
3: इतना धुआं आ रहा था?
6: नहीं नहीं, आग लगने से पहले आपको कहीं महसूस हुआ?
3: सो रहे थे
7: हम, सोए थे. सोने के बाद कोई आया हमको जगाया कि बस में आग लग गई, बस हम निकल के भाग गए.
8: कैसे निकले आप लोग बाहर, क्या स्थिति थी, क्या देखा?
7: वही निकलने लगती स्थिति नहीं थी, बहुत धुआं धुआं था, जिससे तैसे हम लोग अपने घबराहट में निकले.
9: आज रात्रि में लगभग 11:15 बजे ये घटना घटी थी, और ये एसी स्लीपर बस थी जो दिल्ली से महोबा के लिए जा रही थी, और इसमें जो प्रथम दृष्टया बताया गया कि शॉर्ट सर्किट से इसमें आग लगी, और लगभग इसमें 35 यात्री सवार थे. अभी जो सूचना प्राप्त हुई है 9 लोगों की इसमें दुखद मृत्यु हो गई है, और बाकी कुछ लोग घायल थे. जो घायल थे उन लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद जो है इनको महोबा भेज दिया गया है विशेष वाहन से, और एक महिला है जिसका अभी उपचार चल रहा है आरोग्य अस्पताल में. तो इसमें समय से सभी कार्रवाइयां हुई, पुलिस प्रशासन मौके पे था।
10: थाना जीवर पुलिस द्वारा मृतकों की शिनाख्त का प्रयास किए जा रहे हैं। संदर्भित घटना के संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए चालक व परिचालक को हिरासत में लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। यह आग जो है बस के इंजन से स्टार्ट हुई थी, वो फ्यूल होने की वजह से अचानक से आग जो है भयानक हो गई।
0: My colleague Anshul Singh has been tracking this story since early morning. Let me quickly take this up with him. Anshul, another hour passes as we are speaking about this entire case. A little while back, you showed us the insides of the bus, which completely has been ruined and burned and charred. At this point, the investigation, we were talking about how the driver and the conductor have been arrested. But the bigger question is, what about the private bus owner? The violations that have been, you know, brought to the forefront about how there was no fire extinguisher, working fire extinguisher. There was that partition inside the bus, which is not supposed to be there. All of these violations that were there, what about those? What do the police have to say about that?
11: Well, these violations happened today. Let them pass. Violations that the bus has been doing for the past many, many months.
2: Man, 1 lakh rupees, and even after that, no one ever bat an eye to actually stop this bus, ensure that it is seized, because the number of chalans, almost 16 chalans,
11: are pending against the same bus. Now, even over here, you can see right on top of the bus, if I could ask my video journalist Emmanuel to zoom in and show you, there are several materials that have been kept on top of the bus as well. Generally, what these sleeper buses do, they take some extra money from people and act as logistic vehicles as well. And hence, they overload the bus with flammable material. Over here, right, we are at the boot of this bus. And if I could just show you over here, try to give you, there are other materials that have been kept over here. These are nail polish glasses that have been put over here, which are very, very flammable in nature. Apart from that, there are cards, some marriage cards and other flammable documents that have also been put over here. So all this are actually very, very flammable things that catch fire very easily, and it becomes almost impossible for anyone to douse. And remember, it is illegal to supply these flammable materials in these passenger buses. There are other logistical vehicles through which this could be supplied. But in passenger buses, something like this being transported is actually absolutely illegal in nature. So there are hundreds and hundreds of flaws that can be seen with the naked eye that we are seeing. We have just been reporting on it for the last, 2 to 3 hours. And we can ourselves tell you that how many discrepancies we have figured out. But yes, the authorities, the agencies have not bat an eyelid to actually stop this bus because of the challenge that were pending against them, to even check what kind of material is being transported, to check what kind of material is being utilized in the interior of the bus, how the modification has been done in such a way that it is almost impossible for any person to escape from the bus. So everything is now on the authorities. Yes, we can expect that the said owner of the bus would be arrested. But would that mean justice for the 9 lives that they have lost? What about the government officials? What about the traffic police officials who are responsible for ensuring that the bylaws that have been made for passenger safety from the side of the central government and the state governments that are implemented on the ground, these people had no clue, did not want to implement it just for the sake of few bucks that they could have earned through corruption. And even the manner in which the exit has been blocked, we showed our viewers that how the emergency exit has been blocked. All this was done just for a few $100. The ticket of this bus was 800 rupees for the sleeper thing. 9 people have lost their lives because the bus owners were greedy enough to go ahead and put passenger safety aside and ensure that they make maximum profits of the rounds or the trips that the bus is taking. So will action be taken against the government officers or not? That is something Absolutely. That needs to be seen. And will the government actually finally wake up and ensure that all such buses that are running illegally, these are ceased or at least stopped before they follow the bylaws that are mandated?
0: Absolutely, Anshul. Thank you for bringing us all of those details. Viewers, questions that keep mounting on this entire case. Now, as that bus is being looked at and in details it's being investigated, what were the materials that were present inside the bus? You can see there were inflammable substances that were also being carried in the very lower rungs where usually the luggage compartments of these buses. So that several of these violations that have come to the light. It's a coffin on wheels, one could almost say. And basically, that only goes on to prove the fact that this was extremely preventable at the end of the day. What exactly happened? Let's take you through all of the details and summarize them from what we've learned so far since morning. September 24th is when this incident took place in Greater Noida, the Yamuna Expressway. The Uttar Pradesh sleeper bus catches fire. 9 lives claimed. Now, October 24th, 2025, in Kurnool. This visual today that we saw, it takes us back to that very visual. In Andhra Pradesh, there was another bus that was completely ruined because of the same reason. That was traveling from Hyderabad to Bengaluru and the bus caught fire, led to 19 people dying. Again, October 15th, 2025, Jaisalmer, Rajasthan. 21 charred to death after an AC sleeper bus caught fire. May 15th, 2025, Lucknow, Uttar Pradesh again. Sleeper bus caught fire. 5, including 2 kids killed. So this is a repeat occurrence that we keep seeing. And clearly nothing that happens, no matter how much of we see lives being claimed, how much often tragedy it comes about, it's not enough as a wake-up call to the authorities, to the bus owners, to basically at least comply to the safety norms when they have these buses running under them. India Today, in fact, earlier did a ground check on the interstate buses to check for safety protocols, other buses that have, in fact, been on the roads. A bus flying from Delhi to Punjab with commuters on board had just one emergency exit. And mind you, even when we have used such buses, we've seen most of these emergency buses, the emergency exits of these buses, they're jammed. They can't be used. The fire extinguisher found behind the driver's seat in a box is difficult to use in the initial few seconds of fire. So there is no way out of a situation like this. You're trapped completely. And that's what the fate of these 9 people, 9 passengers who were inside the bus were. Here's a report on the same. Take a look.
12: The burning bus that we have seen earlier in Rajasthan, now in Noida, even in the heart of national capital, there are many hundreds of these buses applying every day. The bus which is departing from Kashmiri Gate to Jammu via Punjab has multiple norms floated. We have seen the bus where the fire caught in the driver cabin. But right behind, the emergency exit is extremely narrow. The exit point is so narrow that even normal human person cannot cross it. Right behind, to open the exit door, that seems to be absolutely locked. Even around these buses, if you see the glasses, no mention of emergency exits. Neither the hammers have been provided for these travelers that in case of emergency, they should be able to break it. There is another emergency gate here that's very difficult to open and that has been blocked by a seat. As the driver noticed that we are covering it, we are exposing the irregularities, they have started moving this. There is another, just one emergency gate that I noticed this part. This is on so high. Look at this. The distance is around 15 to 16 feet. In case of emergency, very difficult for the commuters, if there are 50 to 60, that they all will be able to escape through this extremely narrow emergency window. And even within, there have been huge lapses from the security front. Only one fire extinguisher that exists, that too behind the driver's seat, extremely covered and it will be difficult. The golden hours, the initial golden hours in case of tragedies, emergency, accident or even fire, that very narrow window that it provides. And now we see they are applying, plotting all the rules, and this cannot be possible without the collusion of the authorities and the mafia who are running these buses. That's how we call it, burning buses. At Kashmiri Gate, Delhi, with Pawan, I'm Ashutosh Mishra for India Today.
0: On that note, viewers, we are shifting focus to the Delhi gang rape case. Shocking bid to destroy evidence in the Delhi gang rape case is what we're learning. Rapist Hemant and Mukesh washed clothes after raping the 17-year-old minor. Bid to destroy the DNA evidence and semen traces by the rapist. Now, rapists washed their track pants that they wore during that very incident on September 21st. Cops recovered the clothes of all 3 accused. Rapist Hemant completed law degree. Cops probe if law knowledge played a role in this entire incident. Mukesh and Hemant deleted their search histories as well, perverted search histories of their phone devices. So these are the latest details that we're bringing to you into that gang rape case at this given point. And more details are awaited as the probe continues into this entire matter. But with each passing day, the details that have been coming in from this case, it's harrowing. I mean, look at the fact that these are two educated people. And still their mindset is such, one would believe that if you're studying law, you're supposed to be coming out there and helping people understand how to seek justice. Instead of being those who seek justice for others while representing them, these are the people who used their knowledge of understanding forensics or how an investigation takes place. They've used it on the other side to ensure that they do not get arrested. Of course, now all three accused are behind bars, but at the end of the day, this is the entire sequence of events that played out right after the incident took place. They'd fled from the scene and then they'd gone ahead to a lengthy process to ensure that they don't get caught. One of the brothers, between Hemant and Mukesh, he was studying, Mukesh was studying law. And that is what we are in fact learning at this given point. This is a case, a harrowing case, the fourth one in 12 days in the national capital as we speak of sexual harassment, of rape in a city which has lived through the horrors of women's safety and safety concerns and security concerns being raised time and again, and yet we see there's hardly any change in state of affairs. Arvind Oja now joining me on the broadcast with more details. Arvind, agar hum Hemant aur Mukesh ki baat kare, ek unme se law student the, to unko thodi jankari hai ki investigation agar shuru hoti hai to kis taraf jati hai, forensics ka kya role hota hai, kaise DNA evidences search kiye jate hai, aur usi karan unhone अपना और अपने भाई का जो जो भी कपड़े उस दिन पहने हुए थे उन्होंने वो पहले धो लिया ताकि कोई डीएनए एविडेंस ना बाकी रहे. और एक भी चीज पता चल रही है, उनके जो डिवाइसेस हैं उसमें सर्च हिस्ट्री सब डिलीट कर दिया गया. ऐसा क्या था उस फोन में कि उसके सर्च हिस्ट्री ऐसे डिलीट कर दिया गया? ये सारे सवाल अभी सामने आते हैं कि कैसे दो एजुकेटेड लोग अपनी एजुकेशन के इस्तेमाल ऐसे कर रहे थे ताकि वो अपने आप को गिरफ्तारी से बचा सके एक ऐसे क्राइम से.
13: बिल्कुल, देखिए, और जो इंडिया टुडे को सोर्सेस से जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो हेमंत है जिसने लॉ की पढ़ाई की हुई है और उसका दोस्त है मुकेश, इंसिडेंट के बाद मुकेश, हेमंत और आसिफ ये तीनों एक साथ क्राइम सीन से निकले, एक ढाबे पर खाना खाया, उसके बाद सभी अपने घर चले गए. उसके बाद हेमंत और मुकेश ने अपने कपड़ों को साफ किया, उसको धुल दिया और उसके बाद घर में आराम से सो गए, जबकि जो आसिफ है वो मौके से फरार हो गया था जिसको इनकाउंटर के बाद पकड़ा गया. लेकिन हेमंत और मुकेश ने कपड़े धुले थे, वो सभी जो क्राइम के इंसिडेंट के दौरान जिन्होंने कपड़े पहने थे वो कपड़े रिकवर कर लिए गए हैं, उससे भी एविडेंस दिल्ली पुलिस को मिल जाएगा क्योंकि सारे कपड़े फॉरेंसिक टीम को भेजे गए हैं. उसके अलावा ये भी जानकारी मिली है कि अपने मोबाइल से कुछ चैट्स इन सभी ने डिलीट किए थे जिसको दिल्ली पुलिस रिट्रीव कराएगी. लेकिन सबूत मिटाने की कोशिश जरूर आरोपियों की तरफ से की गई, ये जानकारी मिली. और जो सबसे बड़ी बात है कि जब जो नाबालिग लड़के लड़की थे जब वो पार्क में बैठे थे तो ये तीनों अक्यूज्ड गए, और जिस तरह से पुलिस, आम पुलिस आपस में बातचीत करती है जिसमें एक टर्म्स होता है जनाब, जो अमूमन सीनियर अफसर को बोला जाता है, उस तरह का वर्ड ये इस्तेमाल कर रहे थे तीनों आपस में जो नाबालिग हैं उनको ये बताने के लिए कि वाकई वो पुलिस कर्मी है, तो वो जनाब जनाब वर्ड का भी इस्तेमाल कर रहे थे. तो अपने आप को पुलिस वाला बताया, लड़की से पूछताछ करनी है इस बहाने से उसके साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया. अब पुलिस इन तीनों की पुलिस कस्टडी रिमांड लेगी और आगे की पूछताछ करेगी, जो तमाम एविडेंस है वो कलेक्ट करेगी. दिल्ली पुलिस का कहना है कि उनके पास सफिशियंट एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी है जिसमें पता चलता है कि ये तीनों ही आरोपी उस इंसिडेंट में, उस क्राइम इंसिडेंट में शामिल थे.
0: जी जी अरविंद, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. It's a case that we've been following up very closely since September 21st when it came about. We all learned about it on September 21st and 22nd. We've been following it up as to how there was an encounter operation where one of the accused had fled. All of that has been covered. But right now, there are more harrowing details coming in into this very case. On that note, let's shift our focus to another story. Another story which is equally shocking and appalling. It's a rerun of what we had seen in Jamui, the mass molestation rerun in Bihar, Samastipur this time. The sickening video of the incident that happened on Wednesday has come to light, showing two minors, a boy and a girl, being assaulted and harassed by the goons. The girl was groped, assaulted, mishandled, molested by the mob. She kept resisting, but the mob didn't stop. Four accused have been arrested by the police while a hunt is on for the others. Just days back, the Jammu incident shocked the nation. Just like the Samastipur incident, minors were assaulted, harassed and molested by a mob in the name of moral policing. The minors pleaded with folded hands, but the mob showed no mercy. The accused, Nandan Yadav and Hari Ram, were shot in the leg during an encounter. A total of five accused were arrested. Now, Samastipur MP Shambhavi Chaudhary, while speaking to India Today, condemned the action and promised strict action against the accused. She said, "There is no justification for such acts." The opposition, in fact, launched an attack on the Samrat Chaudhary government as well over women's safety.
14: Shambhavi ji, ye aapne Samastipur wali ghatna dekhi hogi jahan ek bar fir matlab Jamui mein jaisa hua tha waisa hi kuch nazar aa raha hai kyunki aapka sansadiya kshetr bhi hai to aapne dekha is video ko koi jankari aapko hui iske bare mein
15: nahi bilkul us video ki jankari hum log ko kal raat mein mili thi aur uske baad se lagatar hum log police prashasan ke sampark mein hain Samastipur police ne bhi raat bhar is par karwai karke char aaropi ko giraftar bhi kiya hai और पुलिस के बयान के आधार पर सब गिरफ्तारी भी हो रही है और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बच्ची की आइडेंटिटी को भी प्रोटेक्ट करके रखें सोशल मीडिया के माध्यम से अगर सर्कुलेट हो रहा है तो उसको भी हम लोग प्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही जो बाकी आरोपी है उसको भी कुछ देर में गिरफ्तार कर लिया जाएगा
14: संभवी लेकिन एक सवाल मतलब कानून व्यवस्था पर भी खड़ा होता है कि भाई जमुई में भी दो तीन दिन पहले ऐसी घटना घटी फिर बैक टू बैक समस्तीपुर में भी इस तरीके की घटना घटी तो आखिर मतलब कहां से हिम्मत आती है ऐसे लोगों को कि लड़कियों को इस तरीके से मतलब परेशान करें सड़क पर अगर चल रही है तो
15: नहीं बिल्कुल बिहार की बेटी होने के नाते ऐसे वीडियोज की जितनी भी निंदा की जाए कम है इस घटना को किसी भी आधार पर आप सरकार में हो या आप सरकार में ना हो इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता महिला की सुरक्षा और बेटियों की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है और मेरे को बस ये लगता है कि सरकार के साथ साथ प्रशासन के साथ साथ एक समाज की भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि महिला सुरक्षा को हम लोग मजबूत करें और अपनी बेटियों के सम्मान में कोई भी कमी ना हो ये सुनिश्चित करें
14: महिला सुरक्षा को लेकर क्या मुख्यमंत्री जी से आप बात करेंगे या फिर से रिव्यू होना चाहिए बिहार में किस तरीके से महिला सुरक्षित हो
15: नहीं बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में हम लोग ये एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि क्राइम और क्रिमिनल्स के खिलाफ हमारा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है अगर कहीं भी अपराध होता है तो किसी भी हालत में अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा और उनको किसी भी तरह का कोई भी संरक्षण नहीं है पर अब जो वीडियोज यहाँ पे दिखाई दे रही है कि किस तरीके से बच्चियों को परेशान किया जा रहा है जब वो कहीं भी किसी भी जिला में हो अगर वो चल रही हैं वो अगर अपने ट्यूशन जा रही हैं वापस आ रही हैं उनके साथ छेड़खानी हो रही है तो डेफिनेटली इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने का हम लोग स्टेप एक कदम भी लेंगे और इस पे हम लोग जरूर चाहेंगे कि एक लार्जर जो एक डिस्कशन है वो शुरू हो और किस तरीके से हम लोग इसको और रिव्यू करके मॉडिफाई कर सकते हैं इसमें भी हम लोग एक अच्छा चर्चा करेंगे
16: बिहार में जिसको आपने मुख्यमंत्री बना के बैठाला है उसका आपराधिक इतिहास क्या है कितना पढ़ा लिखा है उसके बाद बोल देने की कर तो कुछ पा नहीं रहा उसके हाथ से नियंत्रण जा चुका है यही हालत मध्य प्रदेश की है भाजपा शासित राज्यों में जिस तरह बेटियों का अपमान हो रहा है इतना पहले कभी नहीं हुआ था खुलेआम हो रहा है लोग वीडियो बना रहे हैं और उसके बाद भी बेशर्मी की हद कि कार्रवाई वो नहीं हो रही जो होनी चाहिए
17: तीन दिन पहले 19 तारीख को संभवतः जमुई फिर दरभंगा में एक कोशिश की गई फिर समस्तीपुर और कल रात में पटना में जो हुआ उसके बाद मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना मैं तो अपने प्रधानमंत्री जी को ढूंढ रहा हूं कहां गायब है सर क्या कर दिया आपने बिहार का आपके लोग महारप्पा मोहन जोद्रो 25 साल पहले 30 साल पहले जाकर उन परिवारों को कहिए प्रधानमंत्री जी चुनाव के वक्त में एक जुबान और उसके बाद में आंख फेर लेना बिहार से ये बिहार एवरेज बिहारी को अब ये साल था।
18: हालात अच्छे नहीं हैं और मेरा मानना है कि सरकार एक डेड लाइन दे कि अंतिम दिन कौन सा तिथि होगा जिस दिन के बाद बच्ची के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, माँ बहन बेटी सुरक्षित रहेगी। आज के डेट में बिहार के कॉमन मैन, मिडिल क्लास, गरीब, कमजोर तबके का कोई भी क्लास, वर्ग और जाति सुरक्षित नहीं है। सिर्फ नेता, पदाधिकारी, माफिया सुरक्षित है, अपराधी सुरक्षित है और कोई सुरक्षित नहीं है।
0: Now, just days back, the sickening Jamui incident had shocked the nation. Take a look at exactly what had happened. Now remember last year, now Chief Minister Samraj Chaudhary, who was then Nitish Kumar's deputy, had asserted that he would resign as Bihar Deputy Chief Minister if anyone dared to commit a crime on his watch. Today he is the Chief Minister as well as the Home Minister of Bihar. And listen in to what he had to say at India Today's conclave about crimes taking place in the state.
19: जो सबसे बड़ा डर था बिहार में, मैं बोल रहा हूं बिहार का उप मुख्यमंत्री हूं सरकार में, आज यदि दुश्मन आपका नहीं है श्वेता जी तो रात के 12 बजे खाना खाइएगा और अपना गांव देख के एक बार आइएगा। किसी ने छू दिया तो सम्राट चौधरी सवेरे आपको अपना इस्तीफा दे देगा।
0: शिफ्टिंग फोकस टू अनदर डिस्टर्बिंग केस एट दिस गिवन पॉइंट एंड देयर हैव बीन प्लेंटी एज वी स्पीक that we've been tracking. This is from down south. It's a probe that's intensifying in Tamil Nadu minor sexual assault case involving the granite baron, Veeramani. Three police officials, Inspector Mahesh Kumar, who initially investigated the case, Inspector Rajalakshmi of the Anti-Vice Squad and Assistant Commissioner Yasmin, have all been summoned to appear for an inquiry in connection to the Veeramani case. The case was registered in October last year based on a complaint but was then subsequently closed. The officials have now been summoned to inquire into why the case was closed in the first place and whether it was closed under pressure from anyone. And this comes as questions have been raised over involvement of Inspector Rajalakshmi of Anti-Vice Squad and probe, despite another inspector and an assistant commissioner were already handling the case. Now, probe lens is also on another money transfer that's taken place, an alleged money transfer that is. A businessman from Tamil Nadu named Prakash has been issued summons over the alleged money transfer. Cops are now probing if the hush money was used in an attempt to silence the officials' probe in the very case. Now, we have reactions on the same. Take a look.
20: காவல்துறையை நிர்வாக ரீதியாக முடிவெடுத்தார்களா என்பதை வந்து விசாரணை தான் சொல்ல முடியும். நீங்க வந்து போலீஸ் பல கேஸ்ல வந்து எல்லா கேஸ்லயுமே பொலிட்டிக்கல் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் இருக்குன்னு எப்படி சொல்றது? சிலதுல வந்து போலீஸே வந்து மெத்தனமா இருந்திருக்கலாம், இல்ல போலீஸ்க்கு ஆதாரம் இல்லாம இருந்திருக்கலாம். அது வந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்டல் என்கொயரியோ, அவங்க இப்ப நீங்க ஒரு புதுசா போட்டிருக்கிற ஆபீசர் மூலம் என்கொயரி பண்ணி தான் பண்ணும். எல்லாத்திலுமே அரசியல் தலையீடு இருந்தது என்பதை எடுத்த உடனே நீங்க வந்து அதை நிர்ணயம் பண்ணிடக்கூடாது.
0: Breaking news now coming in from the neighbouring state, Karnataka, where Karnataka Chief Minister exclusive on India Today, Chief Minister D.K. Shivakumar attacks the Election Commission on India Today. He says, and I quote, CEC should voluntarily vacate the very chair. It's on the same lines that the party has also spoken on this, where they've come out to say that some have suggested he should be arrested. Some have said that he should instead resign on his own. Now, DK Shivakumar, following the same sentiment and the same stance, has also come out to exclusively speak to India Today on the same and say that he should vacate the chair, the Chief Election Commissioner, Gyanesh Kumar, that is. You should better voluntarily quit and vacate the chair. My leader, Rahul Gandhi, is on the right path. And misusing the powers of Election Commission and vote chori is going on. This is what's exactly been said.

0: यार लोन भूल गया मैरी
1: इट्स
0: जस्ट अ गुड बैंक ना
2: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
2: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन्ड कार लोन टू व्हीलर लोन
3: देयर्स नथिंग स्मॉल अबाउट
4: us उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट us
5: फाइव डिस्टिंक्ट फेसेस वन कॉमन पर्पस इंडिया इन्फॉर्म्ड एंड अहेड वेयर द साउथ फाइंड्स अ वॉइस सुपर सिक्स Sharp questions, zero distractions.
6: You also speak of poor children. Kangana ji, one can always draw analogies sitting high in ivory towers.
5: To the point, the nation's agenda, nothing else matters.
7: There are some who say Pakistan may not be on the verge of breaking up. Pakistan army is unable to control the situation.
5: India first, where decades of experience speaks.
8: So you want to raise your voices, but what do you want to see?
5: News Today, exclusives that shape the headlines.
9: Southern states all unite saying that this is unfair on them.
5: Newstrack, every defining moment, every story that matters. The team that always speaks for you, because you matter.

0: If two of the election commissioners were objecting to these decisions, then obviously it goes to show that the decisions which have been taken, as a consequence of which changes were carried out illegally to Form 6 by way of example, which could have only been done by an amendment to the rules, which has to be laid on the floor of Parliament, then these proceedings are per se arbitrary, capricious, and therefore illegal.
1: ये स्टोरी परत दर परत खोल के रख देती है कि एक संवैधानिक संस्था जिसका काम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है, वो कैसे डिस्क्रिशन को मनमर्जी से कंफ्यूज करती है। मैं समझता हूं 10 महीनों में 14 बार लिखित असहमति व्यक्त की गई, क्लैरिफिकेशन सीख किया गया, आगाह करने की कोशिश की गई, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश जी ने सब चीजों को दरकिनार कर दिया। ही शुड इमीडिएटली रिजाइन, कोई अदर ऑप्शन ही नहीं है।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: यू सोच बदलो और बैंक भी।
2: वी आर इन ए डेमोक्रेसी, हम कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है, डेमोक्रेसी में हम काम करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कमीशन, उसको तो बहुत डेमोक्रेटिक होना ही चाहिए। और वहां पे मेजोरिटी डिसीजन एक्ट में लिखा है, अगर मेजोरिटी से डिसीजन जो नहीं लिए गए हैं वो डिसीजन इलीगल हैं, फुल स्टॉप। ये क्या बचपना है सोर्सेज, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, फॉरन प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो शौक भी है आपको, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो जिसमें तीनों मेंबर होने चाहिए और वो बताएं कि जो आज की रिपोर्ट है वो बिल्कुल गलत और बकवास है और एक्चुअली सारे डिसीजन यूनैनिमसली लिए गए हैं। तो कोई हैरानी, बहुत अच्छा काम किया, वेल डन, ताली बजाते हैं उनके लिए हम।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: थ्री चीफ मिनिस्टर्स, थ्री पावरफुल वॉइसेस फ्रॉम द साउथ, सी जोसेफ विजय, डी केशव कुमार।
4: So in politics, there will be a lot of adjustment, new opportunities, issues. We'll have to digest all those things.
3: V.D. Satishan.
5: You're the people's choice.
6: I'm the party's choice. Party selected me.
3: When they chose to speak first, they chose India Today, the channel where leaders speak.

0: यार लोन भूल गया मैरी इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन्ड कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
3: इट उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
1: सोच बदलो और बैंक भी।
2: कि ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। और पिछले कुछ सालों में जितने चुनाव हुए हैं, दिल्ली का, महाराष्ट्र का, बिहार का, वेस्ट बंगाल का, हरियाणा का, मध्य प्रदेश का, ये सारे चुनाव कैंसिल करके दोबारा कराए जाएं।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: यू
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: फाइव डिस्टिंक्ट फेसेस, वन कॉमन पर्पस, इंडिया इन्फॉर्म्ड एंड अहेड, वेयर द साउथ फाइंड्स अ वॉइस, सुपर सिक्स, शार्प क्वेश्चंस, जीरो डिस्ट्रैक्शंस।
4: यू ऑल्सो स्पीक ऑफ पुअर चिल्ड्रन, Kangana ji, one can always draw analogies sitting high in ivory towers.
3: To the point, the nation's agenda, nothing else matters.
5: There are some who say Pakistan may not be on the verge of breaking up. Pakistan army is unable to control the situation.
3: India first, where decades of experience speaks.
6: So you want to raise your voices, but what do you want to see?
3: News Today, exclusives that shape the headlines.
7: Southern states all unite saying that this is unfair on them.
3: News Track, every defining moment, every story that matters. The team that always speaks for you, because you matter.

0: न्यू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: यू
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: यह एक बेहद गंभीर समाचार है कि पिछले 10 महीने में 2 चुनाव आयुक्तों ने निर्वाचन आयोग के गलत निर्णयों पर 14 बार अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। इससे गंभीर और क्या विषय हो सकता है कि जो भी फैसले हुए हैं उन पर आपत्ति दर्ज कराई है। इसका सीधा मतलब यह है कि सभी चुनाव आयुक्त अपना सही काम नहीं कर पा रहे हैं। एक स्वतंत्र निकाय के सदस्यों को अगर न्यायपूर्ण कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है या उनकी कोई सुनवाई नहीं है तो ये लोकतंत्र के लिए बेहद घातक और खतरनाक हालत है। कुछ लोगों द्वारा सत्ता की कठपुतली बनकर लोकतंत्र को धोखा देना घोर संवैधानिक अपराध है। ये लोकतंत्र को मिटाने के किसी षड्यंत्र से कम नहीं है, सीधा सीधा षड्यंत्र है लोकतंत्र को खत्म करने का।

वी आर इन ए डेमोक्रेसी, हम कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है, डेमोक्रेसी में हम काम करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कमीशन, उसको तो बहुत डेमोक्रेटिक होना ही चाहिए, और वहां पे मेजोरिटी डिसीजन एक्ट में लिखा है, अगर मेजोरिटी से डिसीजन जो नहीं लिए गए हैं वो डिसीजन इलीगल हैं, फुल स्टॉप। ये क्या बचपना है सोर्सेज, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, फॉरेन प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो शौक भी है आपको, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो जिसमें तीनों मेंबर होने चाहिए और वो बताएं कि जो आज की रिपोर्ट है वो बिल्कुल गलत और बकवास है और एक्चुअली सारे डिसीजन यूनैनिमसली लिए गए हैं, तो कोई हैरानी, बहुत अच्छा काम किया, वेल डन, ताली बजाते हैं उनके लिए हम।

0: And now we have breaking news coming in from Delhi's Mukherjee Nagar, where a Delhi student harassment shocker has come to the fore. Delhi student was harassed and abused. Four youth in SUV passed lewd remarks and abuses. The four youth tried to pull the student into the car. A female student in Delhi's Mukherjee Nagar area has alleged that the occupant of a safari vehicle first passed comments and hurled abuses at her. Subsequently, the man followed her and her friend and attempted to pull them into the vehicle. The Delhi police have registered an FIR in this matter and are investigating the case. Both accused have been bound down. The young woman has also released a video on social media. A case was brought to the notice at Mukherjee Nagar police station last night when two girls were walking along a road in Mukherjee Nagar area, and this is what happened. Listen into what the student faced.
1: फर्स्ट ईयर मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ हिंदू कॉलेज से. अभी शाम 9:30 बजे करीब रात में मैं और मेरी दोस्त विजयनगर हकीकत पार्क की तरफ से हम ओजीसी की तरफ जा रहे थे, तो वहां से एक गाड़ी आती है व्हाइट कलर की सफारी और वो अपना शीशा डाउन करती है और वो हमारे ऊपर कुछ कमेंट्स पास करती है. तो हम उन्हें ऐसे बोलते हैं कि मतलब बदतमीजी मत करिए, यहां से चले जाइए. तो इस पे वो इतने ऑफेंड हो जाते हैं कि उन्होंने मतलब इतनी भद्दी गालियां हमें दी कि उसकी कोई लिमिट नहीं है. और फिर जब हम वहां से जाने लगे तो हम देखते हैं कि वो गाड़ी हमें पीछे से फॉलो कर रही है. और जब हम ओजीसी की तरफ बढ़कर रुके कि हम उनकी वीडियो बना सके, तो वो भी गाड़ी वहीं साथ में रुक गई और उन्होंने हमें गाड़ी के अंदर तक खींचने की कोशिश की. उसके बाद जब हमने मतलब मेरी दोस्त ने फोन निकाला तो वो वहां से भागे. उसके बाद वहां पे हम सीधे गए पहले मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन. उन्होंने हमें रेफर कर दिया कि ये एरिया हमारे अंदर नहीं आता. और इस प्रकार से 3 पुलिस स्टेशन का मैं 4-5 घंटे में चक्कर लगा चुकी हूँ, बट हमारी एक FIR तक ये लोग नहीं लिख रहे हैं. और मैंने अपने सोर्सेज से उसकी लोकेशन तक निकलवा ली. उसकी लाइव लोकेशन हमारे पास है. उसका नाम नमन चौधरी है. वो फैकल्टी ऑफ लॉ का स्टूडेंट है और करावल नगर कहीं की उसने लोकेशन भेजी. वो ऐसा रेफर कर रहा है कि कोई शिव चौधरी है, SHO है, वो मैं उनका रिलेटिव हूँ एंड उनकी धमकी दे रहा है वो यहाँ की जो दिल्ली पुलिस है. उसके बावजूद ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं. और अभी कम से कम 4 घंटे से मैं और मेरे जितने भी फ्रेंड्स कॉलेज के हैं वो हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, पर उसके बाद भी इन्हें कोई असर नहीं है. इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इतनी रात को पुलिस स्टेशन में खड़ी हूँ.
2: लड़की के बयान अनुसार उस पर हमने लीगल एक्शन लिया गया है. FIR हो गई है. लड़के आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं इसमें, और इसमें तुरंत कार्रवाई करी गई है. और बाकी जो एज पर स्टेटमेंट जो भी जो विक्टिम का रहेगा उसी के अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे.
0: So that is the case now emerging from Mukherjee Nagar area. You heard from the student who alleged that initially she was trying to file an FIR, but she was sent to multiple police stations saying that this area doesn't fall under their jurisdiction. And so she had to really go to multiple places to really file this FIR. And this we're seeing after another case that we already saw in Delhi. For more on that, we have Himanshu Mishra joining in. Himanshu, pehle to hum Delhi mein Aastha Kunj wala rape case dekhte hai aur ab हम लोग मुखर्जी नगर में एक और केस देख रहे हैं जिसमें इनफैक्ट स्टूडेंट कह रही है कि उनकी FIR भी दर्ज नहीं की जा रही थी काफी समय तक.
3: बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है.
0: Okay, so we seem to have lost connection with Himanshu. We'll join him in once he gets back. But you could hear from the student the harrowing details of how this has now become a normal on the streets of Delhi, where some men were passing her in the SUV and then this incident happened. Now the police is saying that an FIR has been filed. Now the investigation is underway. Now let's look at a mega India Today exclusive news break that has sent tremors across Tamil Nadu. In an exclusive India Today that has accessed images given to cops by Tamil Nadu Congress Ranjan. Now in these images, a man allegedly Baron Veeramani is seen sitting on a bed naked in a place believed to be Veeramani's sex den. In an explosive revelation, Tamil Nadu Congress Neta Ranjan has now claimed that he had lodged a complaint and even submitted screenshots related to Veeramani and Shanti in 2024. He also claimed that the cops then had assured him of action. Now, 3 police officials, Inspector Mahesh Kumar, who initially investigated the case, Inspector Rajalakshmi of the Anti-Vice Squad and Assistant Commissioner Yasmin, have been summoned to appear for an inquiry in connection with the Veeramani case. The case was registered in October last year based on a complaint but was subsequently closed. The officials have now been summoned to inquire into why the case was closed and whether it was closed under pressure from anyone. This comes as questions have been raised over involvement of Inspector Rajalakshmi of Anti-Vice Squad in probe, despite another inspector and an assistant commissioner were already handling the case. Now, the probe lens now is also on the alleged money transfer. A businessman from Tamil Nadu named Prakash has been issued summons over alleged money transfer. Cops are now probing if hush money was used in an attempt

0: that are being asked at this moment. But for now, we do have, more that is going on, even as the investigation is taking force. And we on India Today are going ahead and giving you more on this as the time
1: Absolutely.
0: goes.
1: Right. Definitely. With the amount of scrutiny now this case truly must face, there are some big questions. Apurva, I'll ask you to stay back as we look at some of the big questions that are definitely emerging from this. First of all, why did the cops didn't act despite having so much evidence? Remember, this case dates back to 2004 and 5. We have so much evidence. Even back then, now the Netas are saying that they had filed complaints. So why was no action taken when there were so much evidence? Secondly, how did cops claim that the video was grainy when images are crystal clear? We are showing you these images. We are showing you the videos and the evidence is right there. So this side of the cops claiming that the video was grainy doesn't stand to be true. The third question is also, why was the minor in the video proof not trace? There were so many minors who are now coming to the fore and telling us about their experiences. Why were these minors not traced back when there was already complaints filed against Veeramani? Another question is also, who was shielding Veeramani for so many years? Remember, over two decades this case has been going on. We have gotten now so many accused. The co-accused is now also somewhat confessing. So who was really shielding all these people for many years? And the fifth question is, was any money involved to silence the case against Veeramani? That's another question. If there was any hush money involved to silence the case, because Veeramani is an influential person, so there could be some exchange of money that now the investigation should also look at. And also, who benefited from the delay in Veeramani case? Now, we're seeing that after 20 years, the investigation is being reopened. So many victims who had suffered back then are now coming to the fore as well. So who really benefited from this delay and what already happened in these two decades that we saw? The seventh question is also, were cops under political pressure to shield Veeramani? Because why did the cops did not act? Was there any sort of political pressure to shield Veeramani? Because he is an influential businessman in Tamil Nadu. So was there money involved? Was there political pressure involved that led to the case not being pursued? And what court saw that police investigation missed? What was it that the court saw that the police investigation missed? Because now we're also showing you a lot of these visuals and all of these testimonies that are coming to the fore. So how was it that all of this was missed by the police investigation when all of this evidence is now right there in the open? And also, who had access to Veeramani's rented house, a house of horror, as we say, the house that we're seeing in the CCTV images, wherein you can see a lot of minors going in and coming out, and all of this activity was happening, and who had access to the rented house, and how was it that so many people in and around the area did not raise any questions to it? Or were also there any political leaders in contact with the investigators? Now, that's another important question. If there was any political pressure involved, if there were any political leaders who were already in contact with the investigators, putting pressure on them to not pursue this case, really, because there was involvement of minors, there was involvement of Veeramani. Now, you're also seeing these visuals of him sitting naked, and this man appears to be Veeramani sitting naked on his bed. And now we've also shown you the visuals of the CCTV of the house of horror. So when you piece all of this together, there has to be, when all of this evidence is right there in front, there has to be some sort of an explanation for what led to really Veeramani not an action being taken on him for so far. Now, who are the people who are part of this gang? Are there even, in fact, more people, as also pointed out? So let's look at the gang of villains. The first is, of course, R. Veeramani, who's the Granite chairman. He's very influential, very wealthy businessman in Tamil Nadu. The other is the kingpin accused of molesting minor girls is Mahinder Simhan, Veeramani's close aide, and allegedly he is the one who facilitated all these crimes with Veeramani. Another is Shanti, Mahinder's wife, who's also accused of procuring minors for Veeramani, and she managed to manage the house that was being used for sexual assaults. Now, some sort of confession is also coming from her side, but she was the one basically managing the house of horrors that we've seen, and then she was the one who was getting in all these girls. Another person is Ganeshan, who's also Veeramani's close aide. He carried video proof, but he failed to report. So he was the one who was filming all of this evidence. A lot of what we're also seeing right now could possibly be traced back to him. So these are all the people who are close aides of Veeramani. And these are the names that we now know have come to the fore and we're now sure of. But there could be more people, in fact, involved in this, because remember, we see this case, and now what more is also emerging from this is that there is a hearing now scheduled for these police officers of these anti-vice squad, and why did they not take action when these issues were raised back then? So now a hearing is going to happen, and now we're going to know from the police why did they really not take any action from them. Let me bring in Apoorva back. In Apoorva, now we're also getting to know, first we've of course looked at the big questions, then we're also looking at the people who are around this gang, which was allegedly behind shielding Veera Mani as well. There's so many questions, you know, which come to the fore. Of course, the people who are involved, if there are more people also. And secondly, if you can also tell us about now the hearing in which, you know, the policemen who had looked at the case when it was, the complaints were filed. Now there's, that hearing is going to happen soon. So what could we really see happen then?
0: Well, that's right. In fact, we are getting to learn from sources that three top police officials who had been part of this investigation back then in 2025, they have now been summoned for the investigation as well. And not only that, remember earlier on, we had seen the Congress leader there, Ranjan, going ahead and giving a kind of a statement saying that 2025 October is when we had first given the video. Not only that, earlier in 2024 November as well, that they had gone ahead and given this video, but then there had been a lot of lapses that had taken place and there wasn't any action that was given. But now, with the heat that is picking up, let me remind you, this is also having the POXO court there, wherein the judges directly said that there was no kind of recuse for these accused in this case as well. And even though the junior courts had gone ahead and dismissed this case, citing insufficient evidence, that now the POXO court has also pulled up, saying that this is not just a one-off incident, but now with several names that have been exposed, including that of seven minors that we now know of. This case definitely has picked up a lot right now over the last 1 week. And given that there are only seven that we know of, and there are more and more videos and evidences that are coming up against Mr. Veera Mani.
1: Absolutely. Well, horrifying details are emerging as the investigation in this case is also going on. And India Today will keep tracking and getting you the latest updates on where the investigation is now going to. Thank you, Apoorva, for joining in with those inputs. Now let's look at another shocking horror from Jammu. After we saw the Jammu mass molestation rerun is now happening in Bihar's Samastipur. The sickening video of the incident that happened on Wednesday has come to light, showing two minors, a boy and a girl, being assaulted and harassed by goons. The girl was groped, assaulted, mishandled, and molested by the mob. She kept resisting, but the mob did not stop. Four accused have been arrested by the police while a hunt is on for others. Just days back, you'll remember the Jammu incident had shocked the nation. Just like the Samastipur incident, minors were assaulted, harassed, and molested by a mob in the name of moral policing. The minors pleaded with folded hands, but the mob did not stop. Now, the accused, Nandan Yadav and Hari Ram, were shot in the leg during an encounter. A total of five accused were arrested. Samastipur MP Shambhavi Chaudhary, while speaking to India Today, condemned the action and promised strict action against the accused. She said there is no justification for such acts, and the opposition launched an attack on the Samrat government over women's safety as well.
2: Bihar police or Samastipur police इस प्रकार की सभी घटनाओं को अतिसंवेदनशील मानते हुए त्वरित कार्रवाई करने का प्रयास करती है और घटना की जानकारी मिलने के 6 घंटे के अंदर यह गिरफ्तारी इस बात का प्रमाण है। इसमें एक अभियुक्त है जिनके बारे में इस प्रकार की जानकारी सामने आ रही है कि पूर्व में भी वो शराब से संबंधित मामले में जेल भेजे गए हैं और न सिर्फ ये अभियुक्त बल्कि इनके सभी परिवारजनों के आपराधिक इतिहास, पूर्व में किसी कांड में वांछित हैं या नहीं, इन सब का हम लोग सत्यापन कर रहे हैं और जितनी भी सख्त कार्रवाई होगी वो हम लोग इस घटना में 100% सुनिश्चित करेंगे।
3: शांभवी जी, ये आपने समस्तीपुर वाली घटना देखी होगी जहां एक बार फिर मतलब जमुई में जैसा हुआ था वैसा ही कुछ नजर आ रहा है, क्योंकि आपका संसदीय क्षेत्र भी है, तो आपने देखा इस वीडियो को, कोई जानकारी आपको हुई इसके बारे में?
4: नहीं, बिल्कुल, उस वीडियो की जानकारी हम लोग को कल रात में मिली थी और उसके बाद से लगातार हम लोग पुलिस प्रशासन के संपर्क में है। समस्तीपुर पुलिस ने भी रात भर इस पर कार्रवाई करके 4 आरोपी को गिरफ्तार भी किया है और पुलिस के बयान के आधार पर सब गिरफ्तारी भी हो रही है और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बच्ची की आइडेंटिटी को भी प्रोटेक्ट करके रखें। सोशल मीडिया के माध्यम से अगर सर्कुलेट हो रहा है तो उसको भी हम लोग प्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, और साथ ही जो बाकी आरोपी है उसको भी कुछ देर में गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
3: अम्बवी, लेकिन एक सवाल मतलब कानून व्यवस्था पर भी खड़ा होता है कि भाई जमुई में अभी 2-3 दिन पहले ऐसी घटना घटी, फिर बैक टू बैक समस्तीपुर में भी इस तरीके की घटना घटी, तो आखिर मतलब कहाँ से हिम्मत आती है ऐसे लोगों को कि मतलब लड़कियों को इस तरीके से मतलब परेशान करें सड़क पर अगर चल रही हैं तो?
4: नहीं बिल्कुल, बिहार की बेटी होने के नाते ऐसे वीडियोस की जितनी भी निंदा की जाए कम है। इस घटना को किसी भी आधार पर, आप सरकार में हो या आप सरकार में ना हो, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। महिला की सुरक्षा और बेटियों की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है, और मेरे को बस ये लगता है कि सरकार के साथ साथ प्रशासन के साथ साथ एक समाज की भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि महिला सुरक्षा को हम लोग मजबूत करें और अपनी बेटियों के सम्मान में कोई भी कमी ना हो ये सुनिश्चित करें।
3: महिला सुरक्षा को लेकर क्या मुख्यमंत्री जी से आप बात करेंगी या फिर से रिव्यू होना चाहिए बिहार में किस तरीके से महिला सुरक्षित हो?
4: नहीं बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में हम लोग ये एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि क्राइम और क्रिमिनल्स के खिलाफ हमारा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अगर कहीं भी अपराध होता है तो किसी भी हालत में अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा और उनको किसी भी तरह का कोई भी संरक्षण नहीं है। पर अब जो वीडियोज यहाँ पे दिखाई दे रही है कि किस तरीके से बच्चियों को परेशान किया जा रहा है, जब वो कहीं भी किसी भी जिला में हो, अगर वो चल रही हैं, वो अगर अपने ट्यूशन जा रही हैं, वापस आ रही हैं, उनके साथ छेड़खानी हो रही है, तो डेफिनेटली इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने का हम लोग स्टेप एक कदम भी लेंगे, और इस पे हम लोग जरूर चाहेंगे कि एक लार्जर जो एक डिस्कशन है वो शुरू हो और किस तरीके से हम लोग इसको और रिव्यू करके मॉडिफाई कर सकते हैं इसमें भी हम लोग एक अच्छा चर्चा करेंगे।
5: दुर्भाग्यपूर्ण है और हम समझते हैं कि हमारी सरकार पूरी तरह से संवेदना रखती है और पूरी तरह से सजग है, और आप देखे होंगे कि जिस तरह से जमुई में उन लोगों के साथ इनकाउंटर हुए, सारे लोग पकड़ा गए हैं। जो लोग इस तरह की हिमाकत कर रहे हैं निश्चित जाएगा, उनको दंड दिया जाएगा कानून के आधार पर, और इतनी सख्त सजा मिलेगी कि आने वाला समय में इस तरह के हिम्मत नहीं कर पाए, इस तरह के साहस नहीं दिखा पाए।
6: इस वक्त आपको सबसे पहली तस्वीरें दिखाते हैं समस्तीपुर कांड के, जो 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए वो आज तक के कैमरे में हैं, और ये देखिए ये कैमरे में, आज तक के कैमरे में सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं उन आरोपियों को। कैसे घटना का अंजाम दे दिया आप लोगों ने, कैसे कहां पर दिया, कब दिया, कब दिया, कुछ बताइए, क्यों किया इस तरह का काम? अरे इस तरह का काम क्यों किया जरा बताइए तो,
7: बच्ची के साथ क्यों आपने
6: इस तरह का काम क्यों किया? ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से, ये क्या शर्म नहीं आ रही है इस तरह का काम करने के बाद?
7: क्यों आप लोगों ने इस तरीके से काम,
6: बोलिए, ये आरोपी है, देखिए इनको पुलिस जो है वो लेकर के जा रही है पॉक्सो कोर्ट में, और ये कर्पूरी ग्राम जो पुलिस थाना है वहां से अब आरोपियों को लेकर के पुलिस निकल रही है, जब पॉक्सो कोर्ट ले जाया जाएगा, और आरोपियों के पास कोई जवाब नहीं है। जो तमाम 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए, पुलिस ने 6 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। सर कहाँ लेके जा रहे हैं आप लोग?
8: कोर्ट न्यायालय के लिए लेके जा रहे हैं।
6: इसमें नाबालिग भी हैं क्या?
8: नहीं नहीं, नाबालिग
6: कोई भी नहीं,
8: नहीं, नहीं।
6: सभी वयस्क हैं
8: जी, वयस्क हैं।
6: कुछ बताया इन्होंने पूछताछ में अभी तक, कुछ जानकारी मिली कब, किस तारीख की घटना है?
8: घटना तो 15 तारीख का बताया जा रहा है, लेकिन वीडियो कल वायरल हुआ है, उस पर जो है संज्ञान लिया गया।
6: सभी एक ही गांव के?
8: हाँ सभी आसपास के,
6: आसपास के हैं। तो इन्होंने माना है कि इस घटना को
8: बिल्कुल स्वीकार किया लोग,
6: उसके बाद आप लोग रिमांड पे भेजेंगे इनको, रिमांड पर भी ले सकती है पुलिस।
7: ये आप लोगों ने ऐसा किया?
6: ये केशव कुणाल जी हैं जो कर्पूरी ग्राम थाने के ही हैं, और देखिए ये आरोपियों को देखिए, ये देखिए ये कैसे, ये आरोपी जो है ये अंदर बैठे हैं। इसमें कोई
1: And now we have more breaking news coming in. Remember the Mukherjee case that we just showed you. Now the Delhi harassment victim was an ABVP member. The victim was a friend of the DUSU president Yash Dabas. Now the DU president is saying that he has urged cops to take action first. And DUSU president is adding that the victim visited 2 police stations. The Delhi student harassment shocker, which has come to the fore from Mukherjee Nagar just a day after we saw the Aastha Kunj, a gang rape also. Now, the female student was harassed there. She was abused on the Delhi streets. Four youth were passing by in an SUV and they threw lewd remarks at her and abuses at the girl. The four youth tried to pull the girl and her friend into the car. This is a horror in Delhi's student hub area of Mukherjee Nagar. The victim is now, we're now getting to know, that is associated with the ABBP. And Yash, the DUSU president, has mentioned that she's also a friend of his. In fact, he said that he's told the police personnel to take action first rather than claiming that the matter falls under jurisdiction of different police stations. Because remember, we just saw the girl claiming that she had to go from police station because nobody would register an FIR. And now, in fact, he's adding that Yash is telling us that she has visited both Morris Nagar and Mukherjee Nagar and they will try to bring about a positive change. But why the delay also in filing an FIR? Now listen into what exactly Yash, who's now the DUSU president, also said.
9: पुलिस कर्मियों को भेजा भी गया है जिस एड्रेस पे वो गाड़ी रजिस्टर है और उसके अलावा मैंने SHO सर से भी पर्सनली बोला है कि आप इस विषय पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और हम भी अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि हम कैंपस को वुमेन सेफ वुमेन्स के लिए एक सेफ प्लेस बना सके उसके लिए हमें जो प्रयास करने पड़ेंगे हम करने के लिए तैयार हैं।
10: फर्स्ट ईयर मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ हिंदू कॉलेज से। अभी शाम 9:30 बजे करीब रात में मैं और मेरी दोस्त विजयनगर हकीकत पार्क की तरफ से हम OGC की तरफ जा रहे थे तो वहां से एक गाड़ी आती है व्हाइट कलर की सफारी और वो अपना शीशा डाउन करती है और वो हमारे ऊपर कुछ कमेंट्स पास करती है तो हम उन्हें ऐसे बोलते हैं कि मतलब बदतमीजी मत करिए यहां से चले जाइए तो इस पर वो इतने ऑफेंड हो जाते हैं कि उन्होंने मतलब इतनी भद्दी गालियां हमें दी कि उसकी कोई लिमिट नहीं है और फिर जब हम वहां से जाने लगे तो हम देखते हैं कि वो गाड़ी हमें पीछे से फॉलो कर रही है और जब हम OGC की तरफ बढ़कर रुके कि हम उनकी वीडियो बना सके तो वो भी गाड़ी वहीं साथ में रुक गई और उन्होंने हमें गाड़ी के अंदर तक खींचने की कोशिश की। उसके बाद जब हमने मतलब मेरी दोस्त ने फोन निकाला तो वो वहां से भागे। उसके बाद वहां पे हम सीधे गए पहले मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन। उन्होंने हमें रेफर कर दिया कि ये एरिया हमारे अंदर नहीं आता और इस प्रकार से तीन पुलिस स्टेशन का मैं पिछले चार पांच घंटे में चक्कर लगा चुकी हूं बट हमारी एक FIR तक ये लोग नहीं लिख रहे हैं और मैंने अपने सोर्सेज से उसकी लोकेशन तक निकलवा ली। उसकी लाइव लोकेशन हमारे पास है। उसका नाम नमन चौधरी है। वो फैकल्टी ऑफ लॉ का स्टूडेंट है और करावल नगर कहीं की उसने लोकेशन भेजी। वो ऐसा रेफर कर रहा है कि कोई शिव चौधरी है SHO है वो मैं उनका रिलेटिव हूं एंड उनकी धमकी दे रहा है वो यहां की जो दिल्ली पुलिस है। उसके बावजूद ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और अभी कम से कम चार घंटे से मैं और मेरे जितने भी फ्रेंड्स कॉलेज के हैं वो हम यहां पे खड़े हुए हैं पर उसके बाद भी इन्हें कोई असर नहीं है। इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इतनी रात को पुलिस स्टेशन में खड़ी हूं।
1: And well, that's all that we can pack you for in this bulletin. Thank you for watching. For more news and updates, you can log into indiatoday.in or check out the India Today app.

कि ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। और पिछले कुछ सालों में जितने चुनाव हुए हैं, दिल्ली का, महाराष्ट्र का, बिहार का, वेस्ट बंगाल का, हरियाणा का, मध्य प्रदेश का, ये सारे चुनाव कैंसिल करके दोबारा कराए जाएं।

0: Hello and welcome. You're watching India Today and I'm Jessica Goel bringing you the top news of this hour. And we have some breaking news coming at this point. This is another Gurugram road rage horror. This is the same road where biker Sia was hit. Now an SUV rammed into a car at Gurugram Golf Course Road. The victim alleges that car was vandalized after the crash. The SUV blocked the car with mother-daughter duo inside. The charge is that the accused driver smashed the car with iron rods and the victim alleges that the cops delayed the FIR by 20 days. This is the same road where we saw the Sia incident, the woman biker Sia who was also hit 20 days later. Now, the hit and assault was caught on dash cam of the victim's camera. In the Gurugram case, we see that there was a mother and daughter. They were first abused as another SUV rammed into the car. Now, an FIR has been filed after 20 days. This is the same road where Sia incident also happened. This was a Scorpio which allegedly rammed into the mother-daughter's car on Golf Course. You can see the visuals being also played on the right side where you can see these are the fresh visuals. And it's the same road where the Sia's incident had also taken place. Now, the woman alleges that the Scorpio driver blocked their way after the collision took place. And the accused allegedly pulled out an iron rod and smashed the car's headlight. The incident took place at AIT Chowk on August 27 around 10 p.m. and then FIR was registered nearly 20 days after the incident. Now the case has been registered at Sector 56 police station against unidentified Scorpio driver. The victim says the Scorpio had a temporary registration number. The entire incident was allegedly captured on the car's dash cam, the visuals that we're also playing for you. And now the victim says that the footage was submitted to police as evidence and she is alleging that she repeatedly approached the police after the incident took place. Yet we're seeing that the FIR was filed after 20 days. Now the police has registered a case under BNS sections 125, 281 and 324. Police is also probing the vehicle and accused driver's identity. Now, this incident is coming to light after Shivani or Sia Chauhan, the road rage case which happened on Golf Course Road where we'd seen that the driver hit her and then ran away from the scene. Now, no detailed response has yet been received from Sector 56 police on the alleged delay in FIR registration. But we did speak to the victim of the road rage and that was Arvind Ochoa speaking to her. Listen into that conversation.
1: Red light se pehle hi Scorpio ऐसे निकल रही थी, बहुत धीरे धीरे चला रही थी, लेकिन ग्रीन हो गई थी, हमने ऑन किया और उसके साइड से निकाला
2: जी।
1: तो उसके साइड पहले तो उसमें थोड़ी सी जगह थी लेकिन फिर भी उसने पीछे से हमारी ठोक दी, पीछे की तरफ का काफी ठोक गया। फिर उसको लगा कि एक लड़की कैसे ले जा रही है बाहर, आगे हम अचानक से है ना ग्रीन हो गई थी, हम तो निकल रहे थे, उसने आगे से आके हमारी गाड़ी रोकी उसने, देन थोड़ा सा गलत बोला और रोड थी उसके पास, उसने रोड से हमारी हेडलाइट तोड़ दी और फिर वो भाग गए।
2: कितने लोग उसमें सवार थे?
1: सर एक ही था।
2: एक ही था? और आप लोग गाड़ी में कौन कौन लोग थे?
1: मैं, मेरी बेटी। रेड लाइट से पहले ही स्कॉर्पियो ऐसे निकल रही थी, बहुत धीरे धीरे चला रही थी लेकिन ग्रीन हो गई थी, हमने ऑन किया और उसके साइड से निकाला
2: जी।
1: तो उसके साइड पहले तो उसमें थोड़ी सी जगह थी लेकिन फिर भी उसने पीछे से हमारी ठोक दी, पीछे की तरफ का काफी ठोक गया। फिर उसको लगा कि एक लड़की कैसे ले जा रही है बाहर, आगे हम अचानक से है ना ग्रीन हो गई थी, हम तो निकल रहे थे, उसने आगे से आके हमारी गाड़ी रोकी उसने, देन थोड़ा सा गलत बोला और रोड थी उसके पास, उसने रोड से हमारी हेडलाइट तोड़ दी और फिर वो भाग गए।
2: कितने लोग उसमें सवार थे?
1: सर एक ही था।
2: एक ही था? और आप लोग गाड़ी में कौन कौन लोग थे?
1: मैं, मेरी बेटी।
0: And now we have Arvind Ochoa joining in, the one who is also speaking to the road rage victim. Arvind, आपने road rage victim से बात की, इसमें काफी सवाल उठते हैं। पहले तो ये वही road है जहां पे हमने सिया चौहान का एक्सीडेंट होते हुए देखा, पर ये केस उससे पहले हुआ था, करीब 20 दिन पहले ये केस हुआ था, तो FIR में इतना डिले क्यों?
3: देखिए, ये एक वाजिब सवाल है, न सिर्फ गुरुग्राम के लिए बल्कि दिल्ली समेत

0: कंप्लीट एक्सपोज किया था। इस इंसिडेंट की बात करें तो जहां सिया के साथ इंसिडेंट हुआ था उसी रोड पर ये इंसिडेंट हुआ था जिसमें ये जो पूजा वर्मा विक्टिम है अपनी बेटी के साथ ये जा रही थी, जब 27 अगस्त को जो एक स्कॉर्पियो सवार था उसने पहले गाड़ी को हिट किया, उसके बाद वो उतरता है और ये जो मदर और डॉटर कार में बैठे थे इनको अब्यूज करता है, उसके बाद आयरन रॉड से गाड़ी को तोड़ता है जो रेड लाइट है जो बत्ती है उसको, और उसके बाद फिर गाली गलौज करते हुए भाग जाता है। जो पूजा है उन्होंने इंडिया टुडे से बातचीत में ये बताया है कि वो पुलिस को कंप्लेन दे चुकी थी, बावजूद इसके 20 दिन बाद जो गुरुग्राम पुलिस है उसने ये FIR रजिस्टर्ड किया है, जब ACP ने बुलाया उसके बाद ये FIR रजिस्टर्ड किया है। जो पूरा इंसिडेंट है वो डेस्कैम में रिकॉर्ड भी हो गया, वो डेस्कैम भी इंडिया टुडे ने एक्सेस किया है, यही डेस्कैम जो विक्टिम है उसने गुरुग्राम पुलिस को भी दिया है। गुरुग्राम पुलिस का ये कहना है कि जो अक्यूज है उसकी तलाश की जा रही है, लेकिन ये काफी शॉकिंग है और अक्सर ये देखा जाता है कि कोई भी विक्टिम उसके साथ इंसिडेंट होता है तो किस तरह से जो पुलिस है वो कंप्लेन पर FIR रजिस्टर्ड करने में काफी देरी करती है। जी
1: बिल्कुल, एंड दीज आर द हैरोइंग डिटेल्स नाउ दैट आर इमर्जिंग फ्रॉम दिस केस येट अगेन। थैंक यू अरविंद ओझा फॉर ज्वाइनिंग इन, बट यू कैन सी द विजुअल्स दैट आर आल्सो प्लेइंग ऑन योर स्क्रीन वेयर वी आर सीइंग दैट द कार ड्राइवर एक्चुअली टुक आउट अ रॉड फ्रॉम हिज कार, इट सीम्स दैट ही वाज कैरिंग इट ऑल अलोंग, एंड व्हेन ही सॉ द वुमन ड्राइवर कम अहेड ही बीट हर कार विद दैट आयरन रॉड, वैंडलाइज द कार एंड देन मूव्ड ऑन अहेड। नाउ एन FIR हैज बीन फाइल्ड आफ्टर अ डिले ऑफ 20 डेज, सो नाउ वी आर प्रॉब्ली गोइंग टू सी एन इन्वेस्टिगेशन ऑन दिस case as well. Now let's go across to Sakshi Batra of Business Today who joins us with all the updates of the markets. Over to you, Sakshi.
2: Look, this investment guru tips will double your money. Just claim the offer.
3: Double your money from any random group. Pay attention. Promising double returns, they'll lure you in tight. Unverified groups will send fake tips overnight, emptying your pockets before you can fight.
4: Well said, well said, well said.
3: SEBI and NSE advise, consult only SEBI registered advisors and make payments only to verified accounts or UPI IDs. An investor awareness initiative by SEBI and NSE.
5: Presented by National Stock Exchange.
6: Co-powered by
7: Ujjivan Small Finance Bank. Veka, India's largest selling UPVC window.

0: यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

कि ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। और पिछले कुछ सालों में जितने चुनाव हुए हैं, दिल्ली का, महाराष्ट्र का, बिहार का, वेस्ट बंगाल का, हरियाणा का, मध्य प्रदेश का, ये सारे चुनाव कैंसिल करके दोबारा कराए जाएं।

0: यार लोन भूल गया मैरी इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन्ड कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
3: इट उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

0: If two of the election commissioners were objecting to these decisions, then obviously it goes to show that the decisions which have been taken, as a consequence of which changes were carried out illegally to Form 6 by way of example, which could have only been done by an amendment to the rules, which has to be laid on the floor of Parliament, then these proceedings are per se arbitrary, capricious, and therefore illegal.
1: ये स्टोरी परत दर परत खोल के रख देती है कि एक संवैधानिक संस्था जिसका काम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है, वो कैसे डिस्क्रिशन को मन मर्जी से कंफ्यूज करती है। दस महीनों में 14 बार लिखित असहमति व्यक्त की गई, क्लैरिफिकेशन सीख किया गया, आगाह करने की कोशिश की गई, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश जी ने सब चीजों को दरकिनार कर दिया। ही शुड इमीडिएटली रिजाइन, कोई अदर ऑप्शन ही नहीं है।
2: लॉट ऑफ पीपल टेक साइलीम हस्क फॉर फाइबर।
3: यस।
2: एंड
3: अगर चिया सीड जितनी मार्केटिंग साइलीम हस्क की हो जाए तो इंडिया की गट प्रॉब्लम्स काफी सारी सॉल्व हो जाएंगी।
2: हो जाए। मुझे लगा आप कहेंगे वैरायटी होनी चाहिए फाइबर में, रोज रोज नहीं खा सकते आप पीस ऑफ गोल्ड।
3: सी एज अ डॉक्टर, मेडिसिनल यूज किसी भी चीज का हो, आई विल नॉट रिकमेंड विदाउट टॉकिंग टू योर डॉक्टर, बट इसबगोल इज साइलीम हस्क इज द सुपरमैन फॉर फाइबर, प्रोवाइडेड डन राइट, हैड विद एटलीस्ट 3 ग्लासेस ऑफ वाटर एंड एटलीस्ट 3 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ डे, आइडली एड अ प्रोबायोटिक टू इट विद कर्ड
2: बिफोर मील आफ्टर मील,
3: 7 से 9 के बीच में, डिनर के 2 घंटे पहले 2 घंटे बाद, और दवाई ना ले अपने बीपी और एंटीकोगुलेंट्स, अगर हार्ट पेशेंट हैं तो ब्लड थिनर चल रहे हैं वो सब उसके आसपास ना लें, क्योंकि वो जेल बनाता है, सॉल्युबल फाइबर है पेट में, तो डिले करता है अब्सॉर्प्शन। पता लगा आपको एंटीकोगुलेंट चल रहे हैं, आपको हार्ट अटैक आ गया, तो दवाई 4 घंटे पहले और बाद में ना लें, और एक ब्रेथ टेस्ट करवा लें, क्योंकि अगर आपको सीबो जैसी प्रॉब्लम है, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, क्योंकि वो पेट में जाके एकदम से वो बना रहा है ना, जेल बना रहा है, और क्योंकि वो जेल बना रहा है आप उसे पानी दोगे तभी वो बाइल एसिड को अब्सॉर्ब करेगा, बाइल एसिड को एक्सक्रीट करेगा, तभी आपका लिवर एलडीएल को खींचेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल को और बाइल एसिड में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज अब्सॉर्प्शन को कम करता है, डायबिटिक्स के लिए सब गोल बहुत अच्छा होता है, डिले करता है ना मामले को, ठंडा कर देता है, जैसे आपकी किसी से लड़ाई हुई तो समझदार आदमी कहता है लेट्स स्लीप ऑन इट टुनाइट, आई विल नॉट रिएक्ट टुनाइट, कल सुबह बात करें। जो जेंजी होता है उसी रात को भिड़ जाता है, मतलब सब कुछ लेके, तो इसबगोल कूल्स इट डाउन फॉर अ टाइम, सो तो वी हैव टू बी स्मार्ट, बिकॉज फाइबर इज फॉर योर गट बैक्टीरिया, एंड गट बैक्टीरिया आर द फ्यूचर ऑफ हेल्थ।

0: अगर तीन अफसरों के बीच में पत्राचार होता है, तीन अफसर पत्राचार में अपने अपने मन की बात के वो अपने अपने विषयों को साझा करते हैं और अंततोगत्वा कंसेंसस के साथ रिजल्ट पर पहुंचते हैं, तो ये डेमोक्रेसी है? या एक ही भाषा में पत्र लिखना और उसके बाद एक ही नतीजे पर पहुंचना, ये डेमोक्रेसी है? मुझे लगता है वी कैन हैव नो बेटर टाइम फॉर डेमोक्रेसी देन द प्रेजेंट टाइम इन विच दो यूनानिमिटी इज देयर इन SIR बट स्टिल वी हैड डिस्कशंस एंड डिबेट इन वन ऑफ द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऑफ इंडिया, दैट इज द इलेक्शन कमीशन. और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा एज फार एज SIR इज कंसर्न, बिकॉज ये सारी चीजों के मध्य में SIR है, द सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड वन मेजर फाइनल जजमेंट डायरेक्टली अपहोल्डिंग द लीगैलिटी ऑफ SIR ऑन 27 मई 2026 में इन सभी विषयों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपना जजमेंट बड़े स्पष्ट रूप से SIR को अपहोल्ड करते हुए दिया है. अगर विश्वास सुप्रीम कोर्ट पर भी नहीं है, विश्वास इलेक्शन कमीशन पर भी नहीं है, विश्वास ईवीएम मशीन पर भी नहीं है, अंततोगत्वा जनता पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा. जनता ही वोट देती है, जनता ही हराती या जिताती है. इसलिए आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हम जनता की दरबार में छोड़ते हैं. बहुत बहुत.
1: Well, as you know, my brother Rahul Gandhi ji has been continuously taking up the issue of the biases and the injustice that is going on through the election commissions. He has repeatedly highlighted multiple issues. And now you are seeing that it is coming out in the news media as well, that election commissioners themselves have highlighted some of the issues to Ganesh Kumar ji. So I think this is an extremely serious issue for our democracy. Because if there are no elections, then where is democracy? And if the elections are unfair and they are being rigged in any manner, and the election commission is assisting in that, and if the election commissioner himself is not only aware of it, but he is allowing it to happen, then it is a very, very serious assault on democracy. It is treachery with the nation.

वी आर इन ए डेमोक्रेसी, हम कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है, डेमोक्रेसी में हम काम करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कमीशन, उसको तो बहुत डेमोक्रेटिक होना ही चाहिए, और वहां पे मेजोरिटी डिसीजन एक्ट में लिखा है, अगर मेजोरिटी से डिसीजन जो नहीं लिए गए हैं वो डिसीजन इलीगल हैं, फुल स्टॉप। ये क्या बचपन है सोर्सेज, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, फॉरेन प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो शौक भी आपको, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो जिसमें तीनों मेंबर होने चाहिए और वो बताएं कि जो आज की रिपोर्ट है वो बिल्कुल गलत और बकवास है और एक्चुअली सारे डिसीजन यूनैनिमसली लिए गए हैं, तो कोई हैरानी, बहुत अच्छा काम किया, वेल डन, ताली बजाते हैं उनके लिए हम।

कि ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। और पिछले कुछ सालों में जितने चुनाव हुए हैं, दिल्ली का, महाराष्ट्र का, बिहार का, वेस्ट बंगाल का, हरियाणा का, मध्य प्रदेश का, ये सारे चुनाव कैंसिल करके दोबारा कराए जाएं।

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: यार लोन भूल गया मैरी
2: इट्स
1: जस्ट अ गुड बैंक ना
3: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल फाइनेंस बैंक
3: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
4: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
5: अस उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

0: CBU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: यह एक बेहद गंभीर समाचार है कि पिछले 10 महीने में 2 चुनाव आयुक्तों ने निर्वाचन आयोग के गलत निर्णयों पर 14 बार अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। इससे गंभीर और क्या विषय हो सकता है कि जो भी फैसले हुए हैं उन पर आपत्ति दर्ज कराई है। इसका सीधा मतलब यह है कि सभी चुनाव आयुक्त अपना सही काम नहीं कर पा रहे हैं। एक स्वतंत्र निकाय के सदस्यों को अगर न्यायपूर्ण कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है या उनकी कोई सुनवाई नहीं है तो ये लोकतंत्र के लिए बेहद घातक और खतरनाक हालत है। कुछ लोगों द्वारा सत्ता की कठपुतली बनकर लोकतंत्र को धोखा देना घोर संवैधानिक अपराध है। ये लोकतंत्र को मिटाने के किसी षड्यंत्र से कम नहीं है, सीधा सीधा षड्यंत्र है लोकतंत्र को खत्म करने का।

वी आर इन ए डेमोक्रेसी, हम कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है, डेमोक्रेसी में हम काम करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कमीशन, उसको तो बहुत डेमोक्रेटिक होना ही चाहिए, और वहां पे मेजोरिटी डिसीजन एक्ट में लिखा है, अगर मेजोरिटी से डिसीजन जो नहीं लिए गए हैं वो डिसीजन इलीगल हैं, फुल स्टॉप। ये क्या बचपना है सोर्सेज, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, फॉरेन प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो शौक भी है आपको, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो जिसमें तीनों मेंबर होने चाहिए और वो बताएं कि जो आज की रिपोर्ट है वो बिल्कुल गलत और बकवास है और एक्चुअली सारे डिसीजन यूनैनिमसली लिए गए हैं, तो कोई हैरानी, बहुत अच्छा काम किया, वेल डन, ताली बजाते हैं उनके लिए हम।

0: Every story finds a place. Every voice gets a platform. Every side has its say. Your channel for every headline. Prime Team on India Today. India's only democratic newsroom.
1: ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है. ही इज द बिगेस्ट एंटी नेशनल. ज्ञानेश कुमार इज द बिगेस्ट एंटी नेशनल ऑफ दिस कंट्री और उनको तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए कि बस लोगों के वोट नहीं चुराए जा रहे. जो इलेक्शन कमीशन में काम कर रहे जो दूसरे कमिश्नर से उनके भी वोट चुराए जा रहे, क्योंकि तीन थे, तीन में से दो कह रहे कि ये गलत है लेकिन उनका वोट भी गिना नहीं जा रहा है. ज्ञानेश कुमार वही कर रहा है जो उसकी मर्जी है
2: कि ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए. और पिछले कुछ सालों में जितने चुनाव हुए हैं, दिल्ली का, महाराष्ट्र का, बिहार का, वेस्ट बंगाल का, हरियाणा का, मध्य प्रदेश का, ये सारे चुनाव कैंसिल करके दोबारा कराए जाएं.

0: spa state of mind with a Kohler spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with a Kohler spa at home.
1: यार लोन भूल गया मैरी
2: इट्स
1: जस्ट अ गुड बैंक ना
3: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल फाइनेंस बैंक
3: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन देयर्स नथिंग स्मॉल अबाउट
1: अस उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस
4: एवरी स्टोरी फाइंड्स अ प्लेस एवरी वॉइस गेट्स अ प्लेटफॉर्म एवरी साइड हैज इट्स से Your channel for every headline. Prime Team on India Today, India's only democratic newsroom.

0: spa state of mind with a Kohler spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with a Kohler spa at home.
1: EU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
2: EU
3: सोच बदलो और बैंक भी।

0: ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है। ही इज द बिगेस्ट एंटी नेशनल। ज्ञानेश कुमार इज द बिगेस्ट एंटी नेशनल ऑफ दिस कंट्री और उनको तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए कि बस लोगों के वोट नहीं चुराए जा रहे, जो इलेक्शन कमीशन में काम कर रहे, जो दूसरे कमिश्नर से उनके भी वोट चुराए जा रहे। क्योंकि तीन थे, तीन में से दो कह रहे कि ये गलत है लेकिन उनका वोट भी गिना नहीं जा रहा है। ज्ञानेश कुमार वही कर रहा है जो उसकी मर्जी है।
1: कि ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। और पिछले कुछ सालों में जितने चुनाव हुए हैं, दिल्ली का, महाराष्ट्र का, बिहार का, वेस्ट बंगाल का, हरियाणा का, मध्य प्रदेश का, ये सारे चुनाव कैंसिल करके दोबारा कराए जाएं।

कि ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। और पिछले कुछ सालों में जितने चुनाव हुए हैं, दिल्ली का, महाराष्ट्र का, बिहार का, वेस्ट बंगाल का, हरियाणा का, मध्य प्रदेश का, ये सारे चुनाव कैंसिल करके दोबारा कराए जाएं।

0: and welcome. You're watching In the Club. I am Susan. India has two shots at the International Emmys this year, and they couldn't be more different. Veer Das is back in the comedy race with Pool Volume, while Real Kashmir Football Club has made it to the drama series shortlist. The nominations are out, and here's a look at the Indian contenders and the biggest titles in the global race in a special report by Sana Fazeen.
1: एक एक करके सब लड़के क्लब छोड़ रहे हैं। ये टीम स्पोर्ट है, कोई सोलो शो नहीं चल रहा है।
2: You have activated the evil eye. Well, the evil eye is ill wishers.
3: Two Indian titles.
4: छह महीने तुम्हारे पास। Bring football back to Kashmir.
2: But they do not do ill to you. They just casually wish ill upon you.
5: तो जाओ और कश्मीर
3: टू वेरी डिफरेंट एमी स्टोरीज
5: उस सपने के लिए जो हम सबको जोड़ता है
3: वीर दास इज बैक इन द इंटरनेशनल एमी रेस एंड दिस टाइम इट इज फुल वॉल्यूम दैट हैज मेड द कट इन कॉमेडी
6: देन फॉर 4 मिनट्स वी बोथ जस्ट ऑकवर्डली डांस व्हाइल मेकिंग आई कांटेक्ट
3: इट इज हिज थर्ड नॉमिनेशन एट द इंटरनेशनल एमीज
6: Do you know how many ducks have shown up to my house?
3: After Veer Das for India in 2021,
7: we showed up to India to find yourself. Indians, we go abroad and hope nobody finds us at all.
3: And Veer Das landing in 2023, which went on to win the comedy award that year.
8: America is just miles and miles where you can bury bodies, interrupted by cities that supply them. Mumbai, one of the safest cities in the world. Do you know why? No place to bury a body in Mumbai. That's why.
3: And now, the comedian is back with a special that takes a rather personal route through humor, silence, and finding your voice.
9: The crowd, by the way, half the crowd is gone in the comments. Just make me laugh, bro. Don't make me think. Get someone to tickle you, you basic bitch, alright?
3: And then, from stand-up comedy straight to the football fields of Kashmir.
10: कि हम लोग जीते मगर मुझे लगता है कि यहाँ तक पहुँचने में आप लोगों ने एक बड़ी जीत हासिल कर ली
3: रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब हैज अर्न एन इंटरनेशनल एमी नॉमिनेशन फॉर ड्रामा सीरीज
10: ना खुद गिरेंगे ना अपने लोगों को गिरने देंगे बेस्ट ऑफ लक
5: फुटबॉल क्लब कश्मीर में फुटबॉल क्लब शुरू करके क्या करूं ये सवाल पूछने वाले कभी समझ ही नहीं पाए कि ये क्लब सिर्फ फुटबॉल के बारे में कभी था ही नहीं ये क्लब दो चीजों के बारे में था उम्मीद और इज्जत
3: द शो इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स फॉलोज टू ड्रीमर्स एंड 20 अंडरडॉग्स एज दे अटेम्प्ट टू बिल्ड वन ऑफ इंडियाज मोस्ट अनलाइकली प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब्स
11: दशरथ भाई रुद्रा रहना तनख्वाह कितनी मिलेगी
5: क्या
11: क्लब में खेलने के लिए पैसे मिल रहे हैं ना
12: मुझे खेलना है डैड कोई जरूरत नहीं है
13: आगे क्या करोगी भीख मांगोगे
14: मैं फुटबॉल खेलूंगा
15: अब जो इम्तिहान तैयार हूँ
16: खुद का सपना पूरा कर
14: लेकिन सपनों से घर थोड़ी चलता
17: ये सब कश्मीर के लिए फायदेमंद कैसे हुआ
18: आपको टारगेट किया जा रहा है इतनी हिम्मत कहाँ से आती है
14: भरोसा है
3: एंड दीज टू इंडियन नॉमिनेशंस आर पार्ट ऑफ अ मच वाइडर ग्लोबल फील्ड रिसेंटली The International Academy of Television Arts and Sciences announced 64 nominees across 16 categories, representing 22 countries. And the nominations get even more starry when you move to the acting categories. For Best Performance by an Actor, Spain's Javier Cámara has been nominated for Yakarta. Argentina's Ricardo Darín for The Eternaut.
19: Yo no voy a parar hasta encontrarla.
3: South Africa's Ian Roberts for A Kind of Madness. And Britain's Bobby Scofield for Unforgivable. The Best Performance by an Actress category has Belgium's Mona Lina Leon for Holy Shit, Mexico's Barbara Mori for Luca's World, South Korea's Park Ji-hyun for You and Everything Else, and Britain's Sheridan Smith for I Fought the Law. And that's just the acting categories. Across 16 categories, the 2026 International Emmy nominations bring together television from across the globe. So, for India, the Emmy story this year begins with two titles that couldn't be more different.
20: And I woke up without a voice.
3: Meanwhile, the winners will be announced at the 54th International Emmy Awards Gala in New York City on 23rd November. And before that, all the nominees will come together for the International Emmy World Television Festival from 20th to 22nd November. Entertainment Bureau, India Today.

कि ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। और पिछले कुछ सालों में जितने चुनाव हुए हैं, दिल्ली का, महाराष्ट्र का, बिहार का, वेस्ट बंगाल का, हरियाणा का, मध्य प्रदेश का, ये सारे चुनाव कैंसिल करके दोबारा कराए जाएं।

कि ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। और पिछले कुछ सालों में जितने चुनाव हुए हैं, दिल्ली का, महाराष्ट्र का, बिहार का, वेस्ट बंगाल का, हरियाणा का, मध्य प्रदेश का, ये सारे चुनाव कैंसिल करके दोबारा कराए जाएं।